ये नवरात्रि जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत बहुत, अब सप्तशती में चले जाओ सोचो तो इतना कथा है सप्तशती में, हमारे ऊपर सब घटित हो रही है। काम क्रोध मद लोभ मोह यही तो है हमारे, जो सुम्भ निसुम्भ है और महिषासुर है और मधुकैटभ है, रक्त बीज है, ये सब राक्षस हमारे अंदर में ही है। हम तो बस ले देकर ये पूजा पद्धति तक रह जाते हैं। अब पूजा के बाद देखो, बुरा मत मानना पर मैं बोलने जा रहा हूं, कुछ बच्चे भी देख राह देखने लगते हैं कि नौ नौ दिन बिना मांस मछली के हम रह गए, और कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कितना दिन और रोक कर रहे रखना पड़ेगा। सोचो अब जिस चार खंभे पर टिकी हुई है, सबसे पहला सत्य दया, तप सत्य दया तप और अहिंसा। तो ये अहिंसा जो है, बिना हिंसा के कोई मांस नहीं आती है ना, हिंसा करके तब मांस मिलती है। तो जब हिंसा करके मांस खाओगे तो अपना उत्थान कैसे होगा? भगवती माता के सभी संतान हैं, हम एक दूसरे को मारे तो कैसे हमारा उत्थान, भगवती माता कैसे हमको ऊपर की ओर ले जाएगी? तो ये सब सोचने वाली समझने वाली बात तो बहुत करनी है, पर ये बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं सभी को हार्दिक से शुभकामना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हरिओम, जय श्री राम।

अति सुंदर रूप से। और पंडित जी जो न्यूयॉर्क अमेरिका से हम सबको अपना संदेश नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाए, ये कहावत तो आप जानते होंगे कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। दोस्तों हमारे साथ युवा राधा सिंह जी भी उपस्थित है, उनसे पूछूंगा कहूंगा आग्रह करूंगा कि कुछ संदेश हमारी यौंग्र के लिए भी और सुनावे नवरात्रि के अंतर्गत।

राधा सिंह जी जिन्होंने अपनी ओर से और जाकर के नवरात्रि के अंतर्गत में यानी कि हम सभी के लिए कुछ संदेश सुनाए हैं, हम एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विवान से बातचीत किया जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं नवरात्रि में और क्या जानते हैं नवरात्रि के अंतर्गत।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत देश से पंडित पतंजलि से, जो हम सब के देश में कितने बार आकर के अपना और संदेश यानी कि सुंदर कथन हम सबको सुनाए हैं, वहाँ कोशिश कर रहा हूँ पंडित पतंजलि जी से, जिससे आग्रह करूँगा कि भारत देश से और हम सबको अपना शुभ संदेश इस नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाने का कृपा करें।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नवरात्र वर्ष में चार हैं लेकिन दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष हैं। जो दो गुप्त हैं लोग इन्हें कम जानते हैं, लेकिन दो जो प्रकट हैं, एक शारदीय नवरात्र एक वासंतिक नवरात्र। तो ये दो नवरात्र हैं जो लोग प्रायः जानते हैं। तो दो नवरात्र की चर्चा बहुत है, वर्ष में दो बार है, तो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र। और नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है और उनकी आराधना पूजा जप मंत्र इत्यादि किया जाता है। इससे भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बल बुद्धि सब प्रदान करें। इसलिए विद्यावंतम लक्ष्मीवंतम यशस्वंतम

तो हम भगवती की आराधना करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं। तो भगवती की आराधना माँ दुर्गा की जाती है ये 9 दिनों में। तो ये दुर्गा की आराधना और नवरात्र पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है, बहुत ही अच्छा महोत्सव है। इसमें लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो ये प्रार्थना हम करते हैं कि आप भी इस नवरात्र में कोई शुभ कार्य करें, शुभ संकल्प करें, यही प्रार्थना के साथ। और भगवान से, दुर्गा से प्रार्थना करें क्या कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। हमें माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें माँ दुर्गा से, उन्हीं के चरणों में वंदन करें और भगवती से प्रार्थना करें, आराधना करें। तो हम आप मिल करके भगवती से प्रार्थना करें, यही शब्दों के साथ वाणी विराम करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।

सुनने वालों, इस चुन से आपको भी मालूम हो गया कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले पंडित विश्वानंद लक्ष्मण जी, जो न्यूयॉर्क अमेरिका से अपना संदेश को हम सबको सुनाए, पंडित पतंजलि पांडे जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हम सबको अपना सुंदर संदेश को सुनाए, श्रीमती राधा सिंह जी जो अपने ओर से हमारे यौंग्र के लिए कार्यक्रम में सहयोग दिए, और छोटे विवान ने जो अपना संदेश को हम सबको सुनाए। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आशा यही है कि इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त हो। आशा यही है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम आप सुनते रहना। आप सभी को एक शुभ नवरात्रि प्रस्तुत है। नमस्कार।

तो गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

और टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को नेकतीन फैफ फैफ तक का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

ओर, इसके बाद हम चलते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले को ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत एंड सेशन सेस्टक का ये सॉन्ग है।

दिल के भंवरे करे पुकार अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कही पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत दोस्तों देखती होंदत एहसास फेर तक का मूवी का नाम है अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी मूवी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों। Toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet. Ik heb deze film ook niet gezien. Maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जोनी जरूर चलाना, तो हम जरूर चलाएंगे। आओ मिलकर सुना जाए। ये कालम नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है।

हम उड़ जाएंगे, मौफी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों। और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सो रहबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहूर राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं, फिल्म के नाम है जाल नेगेटिव हंड्रेड एंड ट्वेन फेफ्थ का ये सॉन्ग है दोस्तों। और इसकी ताव सुना जाए, दिस इज हेमंत दादा।

Jal, 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकें।

और बचपन की ये दिनी आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम है।

0: और वो रहेगा।
1: रात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, पितृ पूजा महत्व के बारे में, घट स्थापन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक वर्ष जो कि नवरात्रि का व्रत 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, तो माता दुर्गा की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों का नाश होता है, तथा माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करती है। नवरात्रों के आरंभ में जो कि अमायुक्त प्रतिपदा अच्छी नहीं होती है। आरंभ में घट स्थापन के समय यदि चित्रा और वैधृति हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि चित्रा में धन का और वैधृति में पुत्र का नाश होता है। घट स्थापन समय जो कि प्रातः काल है, अतः उस दिन चित्रा या वैधृति रात्रि तक रहे और रात्रि में नवरात्रों का स्थापन या आरंभ होता नहीं, तो या तो वैधृति आदि के आधे 3 अंश त्याग कर 4थे अंश में करे, या मध्याह्न काल के समय अभिजीत मुहूर्त में स्थापन करे। स्मरण रहे कि देवी का आवाहन, प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन ये सब प्रातः काल में शुभ होता है, अतः उचित समय का अनुपयोग न होने दे। स्त्री हो या पुरुष, सबको नवरात्र करना चाहिए। यदि कारणवश स्वयं न कर सके तो प्रतिनिधि, पत्नी, पति, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण द्वारा कराए। नवरात्र 9 रात्रि पूर्ण होने पर पूर्ण होता है, इसलिए यदि इतना समय न मिल पाए तो सामर्थ्य ना हो तो 7, 5, 3 या 1 दिन व्रत करे, और व्रत में भी उपवास, अयाचित, नक्त व्रत या 1 भुक्त हो, जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत को धारण करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में जो कि माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकृतिताः। इन 9 देवियों का जो कि नवरात्रि में 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2024 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार रात्रि 11:52 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:32 पे। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। 9 अप्रैल को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 4:31 से लेकर के सुबह 5:17 तक होगा। इस दिन योग जो कि अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:32

मिनट से अगले दिन सुबह 5:06 तक होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। 9 अप्रैल को नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र होगा सुबह 7:32 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। इस दिन योग जो कि वैधृति योग होगा दोपहर 2:18 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि 9 अप्रैल को सुबह 11:34 से लेकर के दोपहर 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:09 से शाम 4:43 तक होगा। अब आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वह मुहूर्त 9 अप्रैल को जो कि अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस समय में घट स्थापन का कार्य संपन्न करें जो कि सुबह 11:34 से दोपहर 12:24 तक घट स्थापन का विशेष मुहूर्त होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय चर लाभ और अमृत जो कि सुबह 8:50 से दोपहर 1:34 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 7:43 से रात्रि 9:09 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 10:34 से रात्रि 2:50 तक होगा। घट स्थापन में जो कि खास करके चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में घट स्थापन नहीं करना चाहिए। इस कारण से खास करके जितने भी भक्तजन घट स्थापन का कार्य करने वाले हैं वो सभी अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापन का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। चैत्र नवरात्रि के व्रत में जो कि आप चाहें तो 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ फलाहार रह करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन भर फलाहार का प्रयोग करके रात्रि में एक समय जो कि सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए और गौ घृत का प्रयोग करते हुए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या आप चाहें तो सूर्यास्त होने से पहले ही फलाहार आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ जो कि घट स्थापन करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से माता का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल आदि से माता का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करानी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए और फिर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता भगवती माता दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण अपना मन माता भगवती माता दुर्गा के चरणों में लगानी चाहिए। इनका ध्यान भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे माता जगदम्बा दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।

भक्त वत्सला माता वैष्णो देवी सदा सबकी पुकार सुनती हैं। राजा चंद्रदेव पर टूटा दुख का पहाड़। पहाड़ों वाली माता ने राजा और उसकी पुत्री का दुख हर लिया। उनके वरदान से पुत्री का निष्प्राण सुहाग जीवित हो गया। पुत्री के व्रत से मां प्रसन्न हो गई। राजा की श्रद्धा भक्ति अष्टभुजाधारी मां ने स्वीकार कर ली। वैष्णो माता का द्वार पावन द्वार है।

सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैनसन असिक द माखीफान जोंस ऑफ खांग ऑफ जोंस ऑन द खांगजी बसेफिक दीन ऑफ कॉम्स परमानेंट इस एंड geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, our doston. सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मैं द ग्रोथ रेगोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa hasteren, hamesa hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ एन दी ओफर तेकिंग लीफन बेस्ट मैंसन एन खजो दोर। साथियों, अगर तुम पेड़ नहीं बन सकते तो झाड़ी बनो, अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते तो रास्ता बनो, अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो तारा बनो, तारा बनो, क्योंकि ये तुम्हारे साइज से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो। मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमेंस वेस अन स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन ए अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन जैन वेस दन अन पथ अल्स ये गेन जोन कुन जैन वेस दन अन स्टेर वंत हेट इस नीत डोर ये ग्रोत दैट ये विन ऑफ फरलीस्ट वेस द बेस्ट इन व्हाट यू ऑगमेंट एंड डू लिफ मेंस।

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है मित्रों। लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन एंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओंज जील ओपनीमन वर्त ओंज जील खजोन Wordt onze geest kalm en sterk, wat leidt tot welwillendheid in onze omgeving en verkrijgt ons lichaam immense kracht. Wat mooi is dit toch? Wat is dit toch mooi, lieve mensen? Dus ga zo door, ga zo door. Dosto? हम सभी में अपने और दूसरों के लिए शांति सुकून के साथ साथ स्ट्रेस पैदा करने की क्षमता होती है, हम सभी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मित्रों। और ये हमारा नज़रिया है जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है मित्रों। ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। लिफ मैंसन वे आलोमाल hebben het vermogen om zowel rust, stilte als stress te creëren voor onszelf en voor anderen. En het is onze houding die een van beide onderhoudt en voedt. Ye hamare mein kshamta hai mitron, to burai bhi hai hamare mein aur achhai bhi hai. To in dono mein se hum kya karna chahte hain? कौन सी लेंगे हम, कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूमटाइन है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूमटाइन है। दयालु विचार जड़े हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैंद तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, best and vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हेट लीफन यू हंड्रेड रीडनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन, लात हेट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्थ मैंसन वो माकन है उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तफरीद इन तविलन स्टेलन मर हैत लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्रीग द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Doston, samay kabhi hamara intezaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesha sahi samay ka intezaar kyun karte hain? Dhyan kariye mitron, hum samay ka intezaar kyun karte rehte hain ki sahi samay aayega? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्टमैनसन द तेत वक्त नोइट ऑफ ओंस Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik na hai, het is geen goede tijd.
1: Nee.
0: De tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमन फरखीफन इस मकलक मर ईमान वेर क्यून फुरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अन फोर्स प्रों का हाथ ऑफ कैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस द कोर्ट्स हिट मार खदरख आलस ओपलोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूत ब्लेफ पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते दोस्तों, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उपस्थित हुए हैं ज्ञान के रोशनी कार्यक्रम लेकर आपके लिए। कुछ न कुछ संदेश हम सब खोजकर आपके लिए रखे हुए हैं। और जब नवरात्रि, तो इस नवरात्रि के अंतर्गत में आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं अमेरिका न्यूयॉर्क से पंडित लक्ष्मण विश्वानंद जी, और भारत देश से उत्तर प्रदेश पंडित पतंजलि जी, जो अपने ओर से हम सबको अपना संदेश को सुनाएंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पंडित जी लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको नवरात्रि के अंतर्गत में खास करके जो हमारे व्रतों होते हैं उसके बारे में भी कुछ सुनाने का और कोशिश करना।

हरि ओम, जय जय श्री राम। संजय जी, आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां ये नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। नवरात्रि जो है वो भगवती माता की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। देख लिया जाए तो हमारे जीवन में भगवती माता हमको प्रेरणा देती है कि परिवर्तन हम ला सके अपने जीवन में। और कैसा परिवर्तन? जो पहला है, जो चार होती है, वो ये जो नवरात्रि है, चार नवरात्रि, उसमें दो गुप्त है, वो साधु संतों के लिए है ज्यादा से ज्यादा, और दो तो हम मना ही लेते हैं। सबसे पहला जो है तो वो वसंत ऋतु में जो चैत्र मास होते हैं उस समय पर हम जो मनाते हैं नवरात्रि, उस समय पर देखा जाए तो ये मदर नेचर जो है, मदर नेचर है ना, वही तो है हमारी प्रत्यक्ष जो भगवती माता है, मदर नेचर। तो मदर नेचर जो है उसमें परिवर्तन लाने हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, जो है नए नए फूल निकलते हैं, नए नए पत्ते, नए नए सब कुछ, और कितने जानवर भी है जो हाइबरनेशन जिसे कहते हैं, वो सोए रहते हैं बहुत दिनों तक, तो वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि राह देखते रहते हैं कि ऋतु बदल जाए, अच्छा हो जाए सब कुछ, गर्मी आने लगे तो हम बाहर निकलें। इसी तरह हमारे बच्चे भी और सब लोग राह देखती है कि हम ट्रेन में जाकर खेलें या तो बाहर जा सके, बहुत अच्छा समय आ रही है। तो हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं और उसी समय पर हम उपवास भी करते हैं। अब सोचो उपवास क्या है? उपवास हम माँ के लिए क्यों कर, माँ के लिए, माँ तो सब माँ तो अपने बच्चे के पेट भरा देखना देखनी चाहती होगी, तो माँ तो हमको भूखा नहीं देखना चाहती है, तो हम उपवास किस लिए करते हैं? उपवास में फायदा हमारा ही होता। हमारा फायदा कैसे होती है? देखो, साइंस कहती है कि 16 घंटा तक कोई भूखा प्यासा रह जाए तो उनके शरीर जो है वो बदलने लगती है, उनमें क्षमता है, शरीर में जो क्षमता है, तो वो जो बीमारियां हैं हमारे अंदर में वो निकलने लग 16 घंटा के बाद में। तो हम तो 24 घंटा रह जाते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी कभी। और उपवास भी कई तरह के हैं, कोई एक आहार, कोई अल्प आहार, कम आहार करते हैं, दो बार तीन बार, जिसका जो क्षमता हो, कोई बीमारी के कारण भी नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, जिसका जितना क्षमता हो वो करे। वो निर्जल भी रह सकते हैं, वो एक आहार पर रह सकते हैं, अल्प आहार पर रह सकते हैं, दूध पर रह सकते हैं, फल आहार पर रह सकते हैं, कई तरह के, पर ये जो है हमारी फायदा के लिए है, हमारे जीवन में कोई बीमारी ना आए, क्योंकि ये पवित्रता के लिए है। हमारे जीवन में पवित्रता आए, अंदर से पवित्रता आए, हमारे शरीर में पवित्रता आए उपवास करने से, यह भी ये सब होती है हमारे जीवन में। मैं तो प्रत्यक्ष करके देख रहा हूं। तो ये है, ये भगवती माता हमको अवसर प्राप्त देती है। और ये जो दूसरा है जो अब हम मना रहे हैं आज, अब इस समय पर, तो ये भी इसमें भी परिवर्तन हमको देखने में मिलती है कि पतझड़ में जब पत्ते झड़ने लगते हैं, सब कुछ सूख जाते हैं, तो हम अपना आंगन वगैरह सब कुछ घर साफ करते हैं, आंगन साफ करते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, ये तो साफ बाहर का है, ये तो पवित्रता तो होना चाहिए। हम पूजा पर भी बैठते हैं तो सबसे पहले ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, है ना, तो वो करते हैं। तो पवित्रता जो है, हमारे अंदर के पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। अंदर के पवित्रता जो है, काम को क्रोध मद लोभ मोह वगैरह जो किसी से दुश्मनी है तो उसको कम से कम मनाने की कोशिश करो, उसको क्षमा याचना करो, या तो उससे कह दो कि मनाने का कोशिश करो, कुछ कुछ ना कुछ करो कि निकल जाए, है ना, ये सब कुछ हमारे जीवन में, तभी जाकर हम उत्थान के ओर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देखो, ये नवरात्रि जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत बहुत, अब सप्तशती में चले जाओ, सोचो तो जितना कथा है सप्तशती में हमारे ऊपर सब घटित हो रही है। काम क्रोध मद लोभ मोह, यही तो है हमारे जो शुंभ निशुंभ है और महिषासुर है और मधुकैटभ है, रक्त बीज है, ये सब राक्षस हमारे अंदर में ही है। हम तो बस ले देकर ये पूजा पद्धति तक रह जाते हैं। अब पूजा के बाद देखो, बुरा मत मानना पर मैं बोलने जा रहा हूं कुछ,
बच्चे भी देख राह देखने लगते हैं कि नौ नौ दिन बिना मांस मछली के हम रह गए, और कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कितना दिन और रोक कर रखना पड़ेगा। सोचो, अब जिस चार खंभे पर टिकी हुई है, सबसे पहला सत्य दया, तब सत्य दया, तब और अहिंसा। तो ये अहिंसा जो है, बिना हिंसा के कोई मांस नहीं आती है, है ना। हिंसा करके तब मांस मिलती है। तो जब हिंसा करके मांस खाओगे तो अपना उत्थान कैसे होगा। भगवती माता के सभी संतान हैं, हम एक दूसरे को मारे तो कैसे हमारा उत्थान, भगवती माता कैसे हमको ऊपर की ओर ले जाएगी। तो ये सब सोचने वाली समझने वाली बात तो बहुत करनी है, पर ये बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं सभी को हार्दिक से शुभकामना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हरिओम, जय श्री राम।

अति सुंदर रूप से। और पंडित जी जो न्यूयॉर्क अमेरिका से हम सबको अपना संदेश नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाए, ये कहावत तो आप जानते होंगे कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। दोस्तों हमारे साथ युव राधा सिंह जी भी उपस्थित है, उनसे पूछूंगा, कहूंगा, आग्रह करूंगा कि कुछ संदेश हमारी यौंग्र के लिए भी और सुनावे नवरात्रि के अंतर्गत।

राधा सिंह जी जिन्होंने अपनी ओर से और जाकर के नवरात्रि के अंतर्गत में यानी कि हम सभी के लिए कुछ संदेश सुनाए हैं। हम एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विवान से बातचीत किया जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं नवरात्रि में और क्या जानते हैं नवरात्रि के अंतर्गत।

सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत देश से पंडित पतंजलि से, जो हम सबके देश में कितने बार आकर के अपना और संदेश यानी कि सुंदर कथन हम सबको सुनाए हैं, वहाँ कोशिश कर रहा हूँ पंडित पतंजलि जी से, जिससे आग्रह करूँगा कि भारत देश से और हम सबको अपना शुभ संदेश इस नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाने का कृपा करें।

तो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नवरात्र वर्ष में चार हैं लेकिन दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष हैं। जो दो गुप्त हैं लोग इन्हें कम जानते हैं, लेकिन दो जो प्रकट हैं, एक शारदीय नवरात्र एक वासंतिक नवरात्र। तो ये दो नवरात्र हैं जो लोग प्रायः जानते हैं। तो दो नवरात्र की चर्चा बहुत है, वर्ष में दो बार है, तो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र। और नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है और उनकी आराधना पूजा जप मंत्र इत्यादि किया जाता है। इससे भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बल बुद्धि सब प्रदान करें। इसलिए विद्यावंतम लक्ष्मीवंतम विद्यावंतम यशस्वंतम।

तो हम भगवती की आराधना करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं। तो भगवती की आराधना माँ दुर्गा की जाती है ये 9 दिनों में। तो ये दुर्गा की आराधना और नवरात्र पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है, बहुत ही अच्छा महोत्सव है। इसमें लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो ये प्रार्थना हम करते हैं कि आप भी इस नवरात्र में कोई शुभ कार्य करें, शुभ संकल्प करें, यही प्रार्थना के साथ। और भगवान से, दुर्गा से प्रार्थना करें क्या कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। हमें माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें माँ दुर्गा से, उन्हीं के चरणों में वंदन करें और भगवती से प्रार्थना करें, आराधना करें। तो हम आप मिल करके भगवती से प्रार्थना करें। यही शब्दों के साथ वाणी विराम करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।

सुनने वालों, इस चुन से आपको भी मालूम हो गया कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले पंडित विश्वानंद लक्ष्मण जी, जो न्यूयॉर्क अमेरिका से अपना संदेश को हम सबको सुनाए, पंडित पतंजलि पांडे जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हम सबको अपना सुंदर संदेश को सुनाए, श्रीमती राधा सिंह जी जो अपने ओर से हमारे यौंग्र के लिए कार्यक्रम में सहयोग दिए, और छोटे विवान ने जो अपना संदेश को हम सबको सुनाए। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आशा यही है कि इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त हो। आशा यही है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम आप सुनते रहना। आप सभी को एक शुभ नवरात्रि प्रस्तुत है। नमस्कार।

नई सुबह का नया नसराना ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो उठो तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम नमस्ते। धर्म कर्म फाम हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

0: श्री माता कुसमंदा क्या या कुसमंदा देवी का दिन है।
1: शंकर का गुणगान करो,
0: मिलके आज माता जी का प्रार्थना करेंगे।
1: भक्ति का रस पान करो,
0: घरों में सभी मंदिरों में ये आप हो
2: का ध्यान
0: ध्यान रखना।

रंग फिल्म फाउंड हिंदुस्तानी का भजन कार्यक्रम जो है, अगर आप इन्हें स्पॉन्सर करना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 सी फिल्म 3 7 5 2 8 2 8 4 सी पर आपको तार करना है।

पंचमा स्कंद माता की दिन है, तो स्कंद माता जी का एक स्तुति और आरती हम सब मिलकर सुनेंगे।

0: रात्रि है सुनने वालों और नवरात्रि के उपलक्ष पर पूज्य पंडित रजेश भगवान जिस स्टूडियो में उपस्थित है और उन्हीं के मुखान से आप एक दो प्रवचन सुनेंगे और वो भी आज माँ स्कंद माता है। पंडित जी, स्कंद माता का दिन आज है
1: जी,
0: तो उन्हीं के बारे में सोचता हूँ कि पंडित जी जरूर कुछ बातचीत करेंगे। पंडित जी आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद भाई राजा जी। तो आइए हम हाथों को जोड़कर सर्वप्रथम प्रणाम करें। शुभ मुहूर्त है तो माँ

येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे रेडियो फाहम के सुनने वालों, सभी बशिंदो, मैं हूँ पंडित ब्रजेश भगवंत और सर्वप्रथम मैं सभी को एक शुभ दिवस प्रदान करता हूँ फैन रातू कबेंस और द्वितीय जबकि नवरात्रि पर्व चल रहे हैं तो शुभ नवरात्रि सभी को। हमारे जीवन में जब जब हमारा जन्म होता है तो प्रथम शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं, माँ। और उसी माँ के नाम से हम जब चैत्र आते हैं तो चैत्र नवरात्रि हम मनाते हैं, जब शरद ऋतु आते हैं तो शरद नवरात्रि मनाते हैं। और इस समय आपको तो पता होगा दुनिया सृष्टि में हर एक देश में अब इस समय पे, जैसे विशेष करके हॉलैंड देश में, तो बाहर का मौसम बदल रहा है। द वेयर इज अनथ हेड वेयर इज अनथ फरंद्र एंड वेरी टू बहिंद दुनियाल अमेच वर्क काउट द वर्क। और हम क्या करते हैं, प्रसिद्ध जैसे सोमर दोन भय सोमर वह महीने रंग सोमर खाद, तो अब हम सब मिलकर अब जो बाहर का जो ठंडा मौसम दिखाओ इसमें आना बखेना, तो क्या हो गया, अब नवरात्रि पर्व हम मनाने शुरू कर लिए। प्रथम दिवस शैलपुत्री माँ के नाम से हमने जाकर उनका पूजा प्रार्थना किए, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी जी के नाम से प्रार्थना किए, फिर उनके बाद चंद्र घंटा और फिर जाकर कुष्मंडा और धीरे धीरे हम स्कंद माता की ओर पहुंच गए। हमारे जीवन में जब जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, अलस व्हाट यू विल क्राई इन योर लाइफ मुट यू बेस्ट फॉर नून आल्सो यू बेस्ट नीड डू आल्सो यू इन सेट नीड इज आल्सो गेट ओ लास्ट कैन क्राई। हर एक चीज जो आसान से मिल जाता है ये फीन वार्ग अलस व्हाट यू विल लाइफ मतलब क्राई ये फीन वार्ग व्हाट यू कैन द पेन नीड फुल ऑफ द वर्ल्ड इन सेट आल्सो यू नीड हे फदान को वेट यू नीड इज की कैसे होकर औकात क्या है और व्हाट द वार्ग फन सो इज। ऐसे जाकर हमारे जीवन भी है, हमारे श्वास जो हमें मिला है आलम हारे नदी वक्री कर वो बेकार के लिए नहीं मिला है, ये मिला है, ये जीवन सृष्टि में हमें भेजा गया है और ये सब माँ ही की कृपा से। अगर आप देवी भागवत में प्रवेश करेंगे तो देवी भागवत में बताए गए हैं कि माँ का शक्ति क्या है, मदर नेचर इज द एस्टडी ऑफ द वर्ल्ड इज कोमा और मदर नेचर की शक्ति से हम मानव शरीर को ऑफ द वर्ल्ड वह क्राइकदार और फुटसल और वह फुटसल प्राप्ति करने के बाद भोग करने के बाद पिता के शरीर में वो जाते हैं, फिर उनके बाद वो वीर्य माँ के गर्भ में जाते हैं एंड सो ऑन स्टार्ट द मेंस। अर्थात जब तक माँ की कृपा ना है तब तक हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, इसलिए माँ शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चक्र घंटा और कुष्मंडा से जाकर कल इन दिनों में हमने जाकर काफी लोगों से ये बात बताए कि अगर आप नवरात्रि पर्व को उसका संकल्प ले चुके हो तो और प्रथम दिवस द्वितीय दिवस एर्स्ट एंड ट्वेल्थ हाफ द आल्सो द एर्स्ट एंड ट्वेल्थ हाफ हाल फॉर ऑफ द डेथ दख इज द चंद्र घंटा। घंटा शब्द आपको पता है क्या है कि जो घंटा बज गए आस द बेल इज कसलाकन बजे कंत की माहदार बे, जब माँ चंद्र घंटा का घंटा बज जाता है तो आप प्रवेश कर सकते हो। अगर आप प्रवेश करेंगे तो फिर चतुर्दश दिवस से जाकर माँ कुष्मंडा जी के नाम से ऑफ द वेल नेटल्स एंड पंपुन कुष्मंडा बतेकन पंपुन जिसमें एक एक बीज है और उसमें से एक ही बीज सिर्फ आप निकाल करके और बाहर अपने बगीचा में बो दो तो जाकर अनेकों कुष्मंडा आपको प्राप्ति होगा। और एंड बतेकन बुखार है, ik ben een beetje verkouden, ik ben een beetje ziek. Betekent dat u dus deze dagen als u inzet, dan kunt u de weerstand zodanig opbouwen en als u de kriba heeft van de kwaan, zult u daar minder last van gaan krijgen. Het weerstand bouwen betekent dat u deze dagen de omschakeling wat u in het lichaam heeft gemaakt,
afgelopen periode heeft u geleefd in de, op de manier van de zomerse tijden. En deze dagen moet u gaan leven op de manier van de winterse tijden waar wij naartoe gaan. Betekent, kijab indinome aap jaker, nou raadritelijk aap opwaas kerenge, nou diwastek aap opwaas kerenge, nou diwastek apne sharir ka dhyan kerenge, to aap ka bhitar ka de innerlijke kracht zal naar boven komen. Isilie maskand ka arti hai shakti. शक्ति का मतलब यह है कि जैसे उस समय में तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने पानी ग्रहण किए, शिव भगवान ने जाकर पानी ग्रहण किए माता से, मां पार्वती से, और वो पानी ग्रहण करने के बाद जब दुनिया में बहुत से अत्याचार होने लगे तो उन्होंने जाकर पानी ग्रहण करने के बाद और जाकर उत्पन्न हुआ उनका पुत्र जिसका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी का उत्पन्न हुआ और कार्तिकेय ने जाकर मां स्कंद जी से आशीर्वाद प्राप्ति करने के बाद और सभी आसुरों को जाकर विनाश किए। और इन दिनों में आपको पता होगा आसुर इंद्रमान मार अप्रैल खान मार्च खान दैट इज द एर्स्ट नवरात्रि एंड दन इज द डेट फॉर द मोय ब्रुमन बर्थ द मोय फ्रॉय बर्थ द मोय ब्लाडरन दी अलमा फासिन बट दीस दागन व्हाट गात यू मर्कन इज जस्ट द ऑपोजिट ervan द टेकन ओवर गेस्टेलन betekent dat deze dagen, al die mooie wat toen is gekomen, zullen deze dagen gaan wegvliegen. De eindiging van de eerste, Pratham Navratrike Anhankartehe Ram Naomi's, betekent de Ram in uw innerlijke wordt gecreëerd. De mooiheid van Ramji wordt ontstaan bij u binnen. De mooiheid, de kracht van Ramji ontstaat bij u binnen. En bij de laatste Navratri, wat wij dus nu hebben, eindigen wij met de Dashera. Dashera ka arth kya hai? Ki Dashera arthaad jo hamare jeevan mein, hamare shareer mein, hamare buddhi mein, hamare soch mein, jo Ravan hai, usko hum nikale. राम प्रवेश हुए थे राम जी और अब रावण को निकालने के लिए तो देसे दाखल लीव मेंसर आदि क्रख्तन फन मुदर दिवे हब क्रेकर उसको लेकर और उस रावण को अपने जीवन से निकालो। अब निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, यही भगवती माँ के नाम और आराधना। और कैसे हम उसको कहते हैं कि

नमस्तस्ये नमो नमः। अर्थात माँ भगवती, माँ माँ शक्ति, ऐसे ऐसे इतनो नाम उसने की, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, ऐसे अनेकों अनेकों नामों को आप आराधना करने के बाद माँ भगवती आप में प्रवेश करेंगे और माँ भगवती की कृपा अगर आपके ऊपर पड़ जाएगा तो आपका हर एक मनोकामना जाकर पूरा हो जाएगा। प्रिय भक्तजन, सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में लोग ये मनाते हैं। हमसे, मुझसे भी काफी लोगों ने ये प्रश्न किया कि पंडित जी, अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या मेरा मनोकामना पूरा हो जाएगा। एक व्यक्ति जिनकर परिवार उससे बिछड़ गए, एक व्यक्ति जिनकर परिवार में कलेश है, एक व्यक्ति जो हमेशा अपने जीवन के लिए एक जीवन साथी को खोजते हैं, ऐसे ऐसे अनेकों प्रश्न लोग हमसे आकर किए और कहा कि पंडित जी, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे प्राप्ति हो जाएगा। तो हमने उससे कहा अवश्य ही पूरा हो जाएगा, परंतु मैं आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकूंगा। वैसे समाज सेवक पंडितगण समाज में हम सेवा करते हैं, परंतु हम किसी के ऊपर कृपा नहीं कर पाते। वै केवल नोयति अभिमान कृपा दुन अमृत वै द ग्रहतन साइन फन भगवान जी, हम उनका कर्मचारी हैं, हम उनका सेवक हैं, और इसीलिए हम ये कहते हैं सभी से कि आप कम से कम प्रथम रात्रि से लेकर अंत तक जो करना है करो, अपने गुरु जी के पास जाओ और गुरु जी से विनती करो। और नवरात्रि में जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा सप्तशती दारिन स्टार अल मंत्रस दीपि वेल्थ फॉर क्राइक इन हेडलेप दारिन स्टार अल मंत्रस तोर द तुखांत क्राइक इन इट ऑफ द इन हेलाल दारिन स्टार अलस व्हाट अनमोगुलक इज तोर द मोगुलक है अलस अल मंत्र सेंदारिन। आपको सिद्ध ही सिर्फ करना है और सिद्ध करने के बाद माला जाप करना है, सिद्ध करने के बाद माँ का आराधना करना है, सिद्ध करने के बाद माँ से विनती करना है, तो हर एक मनोकामनाएं आपका पूरा हो जाएगा। प्रिय भक्तजन, इन दिनों में होलंद देश, सुरीनाम देश, भारत देश, चाहे कौन सा देश, सभी देशों में मंदिरों में कार्य होता है। Alle landen overal waar u gaat, en tegenwoordig hebben we heel veel mandirs ook in Nederland, in alle mandirs wordt er maken aradna gedaan. To aap koshish karo, aur vinti karo, aur jao. Jao, apne ghar se shuruaat karo, aur apne jeevan mein, probeer de rust in u te bewaren en probeer de innerlijke kracht, jaise aaj hai maa skanda mata ka, to jo pratham se jaakar aaj panchmi, the fifth dag, as u deze dag heeft bereikt, alle activiteiten heeft gedaan op basis van uw kracht, to jaakar aapko shakti hoga, aur usi shakti se aap jaakar hier aage ke, apan jo de overwinter, zeg ik altijd, lieve mensen, kunt u gaan overwinteren, aur aapki manokamna pura ho jayegi. प्रिय भक्तजन, समय की ओर देखते हुए मैं अंत में यही कहूंगा कि जैसे माँ दुर्गा के चालीसा में बताए गए कि

0: माँ अगर हमारे जीवन में अंधेरा है, माँ अगर हमारे जीवन में कोई कलेश है, तो आप जो निराकार हो सिख बार, फिर भी ये मुझे आप में विश्वास है कि हमारे जितने लोग हैं हमारे इतना जीवन में है, आप चंद्रमा को देने वाले इवेंदीन। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए हम एक छोटी सी संदेश हमारे ओर से, और मैं रेडियो फाहुन का दस्तूर फा रेडियो फाहुन, विशेष करके भाई राजेंद्र द्वारका जी जो हमने ये मौका दिए, मैं सभी को एक शुभ नवरात्रि प्रवेश करता हूँ नवरात्रि टू कमेंस, और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो हमें ये मौका दिया हम यहाँ पे आकर अपने मुखारविंद से कुछ सुना सके। हर जो व्यक्ति जो इस संदेश को सुनते हो, तो रेडियो फाहुन की ओर से भी एक शुभ नवरात्रि हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाव भवे। ओम शांति शांति शांति।
1: आप पंडित रजेश भगवान जी के जरिए प्रवचन सुना, फाउंड के टीम की ओर से पंडित जी को हृदय से धन्यवाद हम देते हैं।

आरती का भजन आप सुन रहे हैं। खुशी की बात है जब आज अक्टूबर के 15 तारीख है तो हमारा साथी बहन बबली भगवान जी का जन्मदिन है और भाई संजय भी हमारा साथी है। भाई संजय और सभी खुरुप जितना है टीम जो है सभी की ओर से बबली जी को बहुत सी बधाई पेश हो।

शिव माता का भजन अभी आप प्रोग्राम में सुना। खुशी की बात है कि आज 15 तारीख है अक्टूबर को, तो हमारा साथी श्रीमती बबली भगवंत जी का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के खास उपलक्ष्य पर पति संजय भगवंत और फाउन के टीम की ओर से बहुत से बधाई पेश किया गया है।

0: जय मां स्कंदमाता,
1: जय माता जी को जय हो। नवरात्रि है और नवरात्रि के उपलक्ष्य पर फावर हिंदुस्तान रेडियो के जरिए भजन के प्रोग्राम आप सुन रहे हो। अनूप जलोत्रा के आवाज में एक मां का भजन आप सुनेंगे।

0: नवरात्रि का समय है। अब की बार खुशमंद माता चालीसा प्रोग्राम में आप सुनेंगे।
1: सभी भक्तों के लिए फलदायी हो।

नवरात्रि का समय है और अब की बार सरनामी कलाकार के आवाज में आप सुनेंगे एक सुंदर सा माँ का भजन।

नवरात्रि के उपलक्ष्य पर सरनामी कलाकार के आवाज में एक माता का भजन आपने सुना। धर्मक्रम फाहुन हिंदुस्तान रेडियो का भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब की बार खुशमंद जाप मंत्र आप सुनेंगे।

नवरात्रि का समय है, दुनिया में चारों लोग जहाँ पर हिंदू परिवार बसा हुआ है सब मिलकर ये नवरात्रि को मनाते हैं धूमधाम से। माँ स्कंद माता ध्यानम श्लोका प्रोग्राम में आप सुनेंगे।

0: माँ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, इसलिए कि जो भी होता है सभी तो माँ करते हैं, माँ आपका सेवा करते हैं, माँ के हम पूजा करते हैं, और माँ पे ध्यान हमेशा हमेशा रखना चाहिए आपको।
1: पर नेत्रों में युद्ध,
0: स्कंद माता स्तुति,
1: हाथों में कमल है पर गोद में देवताओं का सेनापति है, यही है मां स्कंद माता, शक्ति का वो स्वरूप जिसने ममता को ही अपना सिंहासन बनाया, नवरात्रि के पंचम दिवस की अधिष्ठात्री, संतान शांति और सौभाग्य की दात्री। प्रस्तुत है उन्हीं जगन माता की स्तुति, श्रद्धा से सुनिए और अपनी हर मनोकामना मां के चरणों में रख दीजिए। जय मां।

मेरा दिल फाहन हिंदुस्तानी के सुबह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लाइव दोस्तों, और 9:09 बीत गया है। अभी कुछ देर बाद बबली जी जो हमारा अनुसर साथी, उनके लिए एक दो फरमाइश मैं पेश करूंगा। खुशी की बात है जब आज अक्टूबर के 15 तारीख है तो हमारा अनुसर साथी श्रीमती बबली जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन के खास उपलक्ष्य पर जीवन साथी संजय भगवंत जो भी हमारा साथी है उन्हीं के तरफ से पत्नी को बहुत से बधाई पेश किया जा रहा है इस गीत के साथ।

वाह क्या दुआ दिया भाई संजय, अपन जीवन साथी धर्म पत्नी बबली जी को। खुशी की बात है कि जब आज 15 तारीख है अक्टूबर को, तो श्रीमती बबली भगवान का जन्मदिन है और हमारा आनंद साथी भी है। तो पतिदेव संजय भगवान की तरफ से जीवन साथी को बहुत से बधाई पेश किया गया। एक और फरमाइश है बबली जी का, और ये है फाहुन का टीम, फाहुन के फुल टीम डायरेक्सी जितना लीडर है बस्ती सभी के ओर से साथी बबली के लिए ये सॉन्ग, इसलिए कि आज जन्मदिन है बबली जी को और बहुत से बधाई पेश किया जा रहा है।

बृहस्पतिवार है और अक्टूबर के 15 तारीख आज खुशी के बात है कि हमारा अनाउंसर साथी श्रीमती बबली भगवान जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के खास प्रफाहों के फूल टीम की ओर से बहुत से बधाई पेश किया गया। ये आप ही का हैप्पी सीजन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। मौसम के समाचार दोस्तों, आज जब बृहस्पतिवार है तो आज का मौसम किस तरह से रहेगा? फंदा फलों अपने अंदरोह एन सन खनाया met 18 tot 20 graden wordt het zeer zacht en daarbij staat maar weinig wind uit het zuiden.

रानी को ध्यान रखे, ये प्रोग्राम अभी रुक गया है दोस्तों। अभी इसको एक बार फिर मैं चलाता हूँ और आशा उम्मीद के साथ कि अब की बार ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा।

नवरात्रि है और नवरात्र के उपलक्ष्य पर ये भजन स्पेशल मैंने या ये सुंदर सा भजन मैंने माता जी का स्पेशल पेश किया श्रीमान जॉनी नंबर वन उनको जीवन साथी मराई का दोनों के वास्ते फाहुन हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के कार्यक्रम धर्म कर्म के बाद दोस्तों मिक्स मक्स प्रोग्राम चलता है और तुम महकती जवा चांदनी हो माइटी मुकेश के मीठी आवाज़ में

महकती जवा चांदनी हो, चलती फिरती कोई रोशनी हो। दोस्तों फरके से फरमासी अतवालफ और आध्यात्मी पर दरे दरे जगह पर लंबा सा फीलर लगा हुआ, जैसे कि प्रिंस क्लाउस प्लेन, मालीफेल्ड के आसपास और रेसवेक रोटरडाम के बीच भी हाफंस की ओर अगर आप जाते हैं तो लगभग एक घंटा का फर्क तराकें हो सकता है। तो इस बात पे सारा से ध्यान रखना।

इस खन्ना और शर्मिला टैगोर का कमाल आपने देखा दोस्तों इस फिल्म में, और मेरे सपनों के रानी तू कब आओगे, अब की बार चांद आ ही भरेगा, माइटी मुकेश के आवाज़ में।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकातिंग नकाटिंग नकसानी

Now, Mr. Tasif Bucks, और तसीफ बक्स आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स काउंटडाउन।

0: आपकी बार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।
1: The world's number one soca chutney band. You're Dilly Nedan, bigging up the boy DJ Rahman Entertainment to the world.

फ्लोर बिना चटनी कैसे बनी। मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

दिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कर्मा अनु ताकि मिनो लोबी यू, सुमा ताकि मिनो लोबी यू, मिलो बी यू थ्रू।

मिक्सी मोक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

हर एक काम जो रही के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फा और हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सीफ तक 3 5 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखो तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूँ तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

Nieuw song met Piskarunga Dosto, 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गानक बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे.

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप

यार है नया एहसास है। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल, डरों के आवाज़ों में। मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

हिंदी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: Selecta Beats Show Band. Selecta Beats Show Band Bubbling Mashup.
1: Jerry Bass Concept. Selecta Beats Show Band.
0: न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं

चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो है, यहाँ पहुँचते हैं यहाँ से जापान, चलिए जापान देखते हैं जापान में क्या हो रहा है। लता जी आपको सुना रही हैं।

वाह क्या बात है लता जी, अपनी आवाज में आपको सुना है, इसे चेन्नई नहीं गा रहे। बहरहाल वाह क्या लता जी, जापान पहुंच गए। चलिए वाह वापस जापान से लौटते हैं, और लौटते हैं कहाँ, कुमार सानू के पास। चलिए कुमार सानू आपको क्या सुना रहा है। कभी हाँ कभी ना फिल्म का नाम है। हाँ प्यार में तो होता है, कभी हाँ होता है कभी ना होती है, तो हाँ और ना के ये सिलसिला हम आपको सुनाते हैं, और कुमार सानू आपको गाकर सुनाता है।

अरे काश के हम होश में अब आने ना पाए, फिल्म का नाम है फिल्म कभी हाँ कभी ना, हम इसे निकाल कर हम आपको सुनाए। चलिए राज कपूर, ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, ये फिल्म बहुत चला बहुत चला, कौन है जो ये फिल्म नहीं देखा होगा। तो आप सोच रहे हो गंगा कौन सा गीत है, तो चलो अब आपको सुनाते हैं।

अच्छा मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, लेकिन उसके बाद मैथिली मुकेश भी क्या कह रहा है जहाँ कि उन्हें प्यार से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, कोई मतलब नहीं है। तो सुनिए मैथिली मुकेश।

मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, आपको सुना है फिल्म कन्हैया में से निकाल कर हम ये शानदार गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। लेकिन सोनू निगम बैठकर मुकेश जी की गीत सुन रहा था, वो कहता है कि अरे मुकेश जी, उन्हें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है प्यार करने में, तो क्या ख्याल है?

वाह क्या बात है, अलका याग्निक के साथ कुमार सानू ये शानदार गीत पेश किए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप चुन हैं, आप जहां भी होंगे कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो गायक भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं यानी सिंगर भी हैं और कोरियोग्राफर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे वो कौन शख्स है। चलिए उनकी आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। वो है म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज आनंद। आनंद राज आनंद चलिए आपको सुना रहा है ये गीत।

0: वाह क्या बात है, आनंद राज आनंद आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम फिल्म है हद कर दी आपने। ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जो कभी एक गीत गाए हैं जो बहुत पॉपुलर हुआ, एक ही रात में समझो ये म्यूजिक डायरेक्टर पॉपुलर हो गया अपना गीत से, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, यही म्यूजिक डायरेक्टर ने गाए हैं, हम आपको सुनाए।
1: Dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, d

0: वाह माधुरी दीक्षित की नाच, क्या बात है। शाम के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएं सुनिधि चौहान की आवाज़ में, आ जा नचले नचले मेरी यार तू नचले। तो सुनिधि चौहान के बाद क्या कहूँ कि सपना अवस्थी, जी हाँ सपना अवस्थी और चेतन शशि ये दोनों भड़क गए हैं, ये कह रहे हैं तो क्या, अगर ऐसे बात है तो नाचने के लिए घाघरा चाहिए ना, तो लीजिए हम आपको घाघरा के बाद सुनाते हैं।
1: पतली कमर मटक
0: फिल्म शूल में से निकाले हैं।
2: हाय हाय हाय हाय हाय
1: नागिन से बल खाके
2: हाय हाय हाय हाय हाय हाय

पता नहीं यूपी बिहार लूट लिया गया, ये लोग खुद लूट गए हैं, यही नहीं मालूम है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये शानदार भी गीत पेश की और फिल्म शूल में से निकाल कर सपना अवस्थी अवचेतनीय मिल के ये शानदार गीत आपको सुनाए। चलिए अगला गीत अपने प्लेयर में रखे हैं, वो है उदित नारायण जी और अलका याग्निक। चलो सुनते हैं ये क्या फरमाते हैं।

0: फिल्म जीत में से निकाले हैं अलका याग्निक और उदित नारायण जी, दोनों मिलके आपको सुनाए सांसों का चलना, दिल का मचलना। तो हम आपको अब क्या सुनाएंगे, बिल्लू रानी। चलिए बिल्लू रानी सुनते हैं, क्या कमाल करते हैं बिल्लू रानी।
1: शहर में दूसरी कोई नहीं तुझसे
0: रिचा शर्मा,
1: देख यही पूछ है किसकी बिल्लो।
0: वही म्यूजिक डायरेक्टर आनंद राज।

लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। ऋचा शर्मा और आनंद राज, आनंद में सुख डायरेक्टर, फिल्म है दे दना दन गोल। कोई कह रहा था गंगा तू हम लोग को क्या नचा रहा है, नाचते नाचते थक गए। तो अगर ये नाचते नाचते थक गए तो चलिए मैं आपको ये गीत सुना रहा हूँ इस तरह से।

पुरी नारायण जी और अलका याग्निक मिलके आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाओ हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी साज में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

मेरे प्यार हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिया है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं। एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है।

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यार ही मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी ही आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है, वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर ये भी है एक।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते राहत फतेह अली खान।

अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड, जी हाँ, मैत मुकेश और शारदा जी।

माइति मुकेश द हार्ट ऑफ ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ, अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं, क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं, सदा रहेगी। रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत है पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.fawnfm इंटरनल पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता है इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम।
2: ठहरो,
1: फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

मैं मुकेश, मैं तो मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिलके सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर जो मैं यार आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है। चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चून कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत इस तरह से।

माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस ऑल लता जी साथ दी और शानदार गीत हमने पेश किए, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफ़ी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये द्वैत सुनाएं जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माई थी मुकेश जी और लता जी, ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जयकिशन के साथ पर। कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम। बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निकली सेफ न सस्त, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

ते दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफ तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति ए ने सैफ दख का ये गीत है। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत। हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। आप सुनोगे, मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना है तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सईफ अंतक का ये गीत, 1971 का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54, यानी 405 तक या 505 तक, बहरहाल रौंद 405 तक, 405 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीबे तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं, बहुत सारी सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं। और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त, जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है, तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं के सिलसिला हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफ सैफ दुख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओ फरफाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते दोस्तों, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उपस्थित हुए हैं ज्ञान की रोशनी कार्यक्रम लेकर आपके लिए। कुछ न कुछ संदेश हम सब खोज कर आपके लिए रखे हुए हैं। और जब नवरात्रि, तो इस नवरात्रि के अंतर्गत में आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं अमेरिका न्यूयॉर्क से पंडित लक्ष्मण विश्वानंद जी, और भारत देश से उत्तर प्रदेश पंडित पतंजलि जी, जो अपने ओर से हम सबको अपना संदेश को सुनाएंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पंडित जी लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको नवरात्रि के अंतर्गत में खास करके जो हमारे व्रतों होते हैं उसके बारे में भी कुछ सुनाने का और कोशिश करना।

हरि ओम, जय जय श्री राम। संजय जी, आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां ये नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। नवरात्रि जो है वो भगवती माता की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। देख लिया जाए तो हमारे जीवन में भगवती माता हमको प्रेरणा देती है कि परिवर्तन हम ला सके अपने जीवन में। और कैसा परिवर्तन? जो पहला है, जो चार होती है, ये जो नवरात्रि है, चार नवरात्रि, उसमें दो गुप्त है, वो साधु संतों के लिए है ज्यादा से ज्यादा, और दो तो हम मना ही लेते हैं। सबसे पहला जो है तो वो वसंत ऋतु में जो चैत्र मास होते है उस समय पर हम जो मनाते हैं नवरात्रि, उस समय पर देखा जाए तो ये मदर नेचर जो है, मदर नेचर है ना, वही तो है हमारी प्रत्यक्ष जो भगवती माता है, मदर नेचर। तो मदर नेचर जो है उसमें परिवर्तन लाने लग, हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, जो है नए नए फूल निकलते हैं, नए नए पत्ते, नए नए सब कुछ, और कितने जानवर भी है जो हाइबरनेशन जिसे कहते हैं, वो सोए रहते हैं बहुत दिनों तक, तो वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि राह देखते रहते हैं कि ऋतु बदल जाए, अच्छा हो जाए सब कुछ, गर्मी आने लगे तो हम बाहर निकलें। इसी तरह हमारे बच्चे भी और सब लोग राह देखती है कि हम ट्रेन में जाकर खेलें या तो बाहर जा सके, बहुत अच्छा समय आ रही है। तो हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं और उसी समय पर हम उपवास भी करते हैं। अब सोचो उपवास क्या है? उपवास हम माँ के लिए क्यों कर, माँ के लिए, माँ तो, सब माँ तो अपने बच्चे के पेट भरा देखनी चाहती होगी, तो माँ तो हमको भूखा नहीं देखना चाहती है, तो हम उपवास किस लिए करते हैं? उपवास में फायदा हमारा ही होता। हमारा फायदा कैसे होती है? देखो, साइंस कहती है कि 16 घंटा तक कोई भूखा प्यासा रह जाए तो उनके शरीर जो है वो बदलने लगती है, उनमें क्षमता है, शरीर में जो क्षमता है, तो वो जो बीमारियां हैं हमारे अंदर में वो निकलने लग 16 घंटा के बाद में। तो हम तो 24 घंटा रह जाते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी कभी। और उपवास भी कई तरह के हैं, कोई एक आहार, कोई अल्प आहार, कम आहार करते हैं, दो बार तीन बार, जिसका जो क्षमता हो, कोई बीमारी के कारण भी नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, जिसका जितना क्षमता हो वो करे। वो निर्जल भी रह सकते हैं, वो एक आहार पर रह सकते हैं, अल्प आहार पर रह सकते हैं, दूध पर रह सकते हैं, फल आहार पर रह सकते हैं, कई तरह के, पर ये जो है हमारी फायदा के लिए है, हमारे जीवन में कोई बीमारी ना आए, क्योंकि ये पवित्रता के लिए है, हमारे जीवन में पवित्रता आए, अंदर से पवित्रता आए, हमारे शरीर में पवित्रता आए उपवास करने से, यह भी ये सब होती है हमारे जीवन में। मैं तो प्रत्यक्ष करके देख रहा हूँ। तो ये है, ये भगवती माता हमको अवसर देती है। और ये जो दूसरा है जो अब हम मना रहे हैं आज, अब इस समय पर, तो ये भी, इसमें भी परिवर्तन हमको देखने में मिलती है कि पतझड़ में जब पत्ते झड़ने लगते हैं, सब कुछ सूख जाते हैं, तो हम अपना आंगन वगैरह सब कुछ, घर साफ करते हैं, आंगन साफ करते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, ये तो साफ बाहर का है, ये तो पवित्रता तो होना चाहिए। हम पूजा पर भी बैठते हैं तो सबसे पहले ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा है ना, तो वो करते हैं। तो पवित्रता जो है, हमारे अंदर के पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। अंदर के पवित्रता जो है, काम को, क्रोध, मद, लोभ, मोह वगैरह, जो किसी से दुश्मनी है तो उसको कम से कम मनाने की कोशिश करो, उसको क्षमा याचना करो, या तो उससे कह दो कि मनाने का कोशिश करो, कुछ ना कुछ करो कि निकल जाए, है ना, ये सब कुछ हमारे जीवन में, तभी जाकर हम उत्थान की ओर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देखो, ये नवरात्रि जो है, ये हमारे जीवन में एक बहुत बहुत, अब सप्तशती में चले जाओ, सोचो तो जितना कथा है सप्तशती में, हमारे ऊपर सब घटित हो रही है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यही तो है हमारे, जो शुंभ निशुंभ है और महिषासुर है और मधुकैटभ है, रक्त बीज है, ये सब राक्षस हमारे अंदर में ही है। हम तो बस ले देकर ये पूजा पद्धति तक रह जाते हैं। अब पूजा के बाद, देखो बुरा मत मानना, पर मैं बोलने जा रहा हूँ कुछ,
बच्चे भी देख राह देखने लगते हैं कि नौ नौ दिन बिना मांस मछली के हम रह गए, और कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कितना दिन और रोक कर रखना पड़ेगा। सोचो, अब जिस चार खंभे पर टिकी हुई है, सबसे पहला सत्य दया, तब सत्य दया, तब और अहिंसा। तो ये अहिंसा जो है, बिना हिंसा के कोई मांस नहीं आती है, है ना। हिंसा करके तब मांस मिलती है। तो जब हिंसा करके मांस खाओगे तो अपना उत्थान कैसे होगा। भगवती माता के सभी संतान हैं, हम एक दूसरे को मारे तो कैसे हमारा उत्थान, भगवती माता कैसे हमको ऊपर की ओर ले जाएगी। तो ये सब सोचने वाली समझने वाली बात तो बहुत करनी है, पर ये बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं सभी को हार्दिक से शुभकामना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हरिओम, जय श्री राम।

अति सुंदर रूप से। और पंडित जी जो न्यूयॉर्क अमेरिका से हम सबको अपना संदेश नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाए, ये कहावत तो आप जानते होंगे कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। दोस्तों हमारे साथ युव राधा सिंह जी भी उपस्थित है, उनसे पूछूंगा कहूंगा आग्रह करूंगा कि कुछ संदेश हमारी यौंग्र के लिए भी और सुनावे नवरात्रि के अंतर्गत।

राधा सिंह जी जिन्होंने अपनी ओर से और जाकर के नवरात्रि के अंतर्गत में यानी कि हम सभी के लिए कुछ संदेश सुनाए हैं। हम एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विवान से बातचीत किया जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं नवरात्रि में और क्या जानते हैं नवरात्रि के अंतर्गत।

देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत देश से पंडित पतंजलि से, जो हम सबके देश में कितने बार आकर के अपना और संदेश यानी कि सुंदर कथन हम सबको सुनाए हैं, वहाँ कोशिश कर रहा हूँ पंडित पतंजलि जी से, जिससे आग्रह करूँगा कि भारत देश से और हम सबको अपना शुभ संदेश इस नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाने का कृपा करें।

सन्तु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नवरात्र वर्ष में चार हैं लेकिन दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष हैं। जो दो गुप्त हैं लोग इन्हें कम जानते हैं, लेकिन दो जो प्रकट हैं, एक शारदीय नवरात्र एक वासंतिक नवरात्र। तो ये दो नवरात्र हैं जो लोग प्रायः जानते हैं। तो दो नवरात्र की चर्चा बहुत है, वर्ष में दो बार है, तो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र। और नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है और उनकी आराधना पूजा जप मंत्र इत्यादि किया जाता है। इससे भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बल बुद्धि सब प्रदान करें। इसलिए विद्यावंतम लक्ष्मीवंतम विद्यावंतम यशस्वंतम

जय हिंद। तो हम भगवती की आराधना करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं। तो भगवती की आराधना माँ दुर्गा की जाती है ये 9 दिनों में। तो ये दुर्गा की आराधना और नवरात्र पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है, बहुत ही अच्छा महोत्सव है। इसमें लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो ये प्रार्थना हम करते हैं कि आप भी इस नवरात्र में कोई शुभ कार्य करें, शुभ संकल्प करें, यही प्रार्थना के साथ। और भगवान से, दुर्गा से प्रार्थना करें क्या कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हमें माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें माँ दुर्गा से, उन्हीं के चरणों में वंदन करें और भगवती से प्रार्थना करें, आराधना करें। तो हम आप मिल करके भगवती से प्रार्थना करें, यही शब्दों के साथ वाणी विराम करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।

सुने वालों, इस चुन से आपको भी मालूम हो गया कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले पंडित विश्वानंद लक्ष्मण जी, जो न्यूयॉर्क अमेरिका से अपना संदेश को हम सबको सुनाए, पंडित पतंजलि पांडे जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हम सबको अपना सुंदर संदेश को सुनाए, श्रीमती राधा सिंह जी जो अपने ओर से हमारे यौंग्र के लिए कार्यक्रम में सहयोग दिए, और छोटे विवान ने जो अपना संदेश को हम सबको सुनाए। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और आशा यही है कि इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त हुए। आशा यही है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम आप सुनते रहना। आप सभी को एक शुभ नवरात्रि प्रस्तुत है। नमस्कार।

पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते दोस्तों, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। उपस्थित हुए हैं ज्ञान की रोशनी कार्यक्रम लेकर आपके लिए, कुछ न कुछ संदेश हम सब खोज कर आपके लिए रखे हुए हैं। और जब नवरात्रि, तो इस नवरात्रि के अंतर्गत में आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं अमेरिका न्यूयॉर्क से पंडित लक्ष्मण विश्वानंद जी और भारत देश से उत्तर प्रदेश पंडित पतंजलि जी, जो अपने ओर से हम सबको अपना संदेश को सुनाएंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पंडित जी लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको नवरात्रि के अंतर्गत में खास करके जो हमारे व्रतों होते हैं उसके बारे में भी कुछ सुनाने का और कोशिश करना।

हरि ओम, जय जय श्री राम। संजय जी, आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां ये नवरात्रि के उपलक्ष्य पर। नवरात्रि जो है वो भगवती माता की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। देख लिया जाए तो हमारे जीवन में भगवती माता हमको प्रेरणा देती है कि परिवर्तन हम ला सके अपने जीवन में। और कैसा परिवर्तन? जो पहला है, जो चार होती है, वो ये जो नवरात्रि है, चार नवरात्रि, उसमें दो गुप्त है, वो साधु संतों के लिए है ज्यादा से ज्यादा, और दो तो हम मना ही लेते हैं। सबसे पहला जो है तो वो वसंत ऋतु में जो चैत्र मास होते हैं उस समय पर हम जो मनाते हैं नवरात्रि, उस समय पर देखा जाए तो ये मदर नेचर जो है, मदर नेचर है ना, वही तो है हमारी प्रत्यक्ष जो भगवती माता है, मदर नेचर। तो मदर नेचर जो है उसमें परिवर्तन लाने हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, जो है नए नए फूल निकलते हैं, नए नए पत्ते, नए नए सब कुछ, और कितने जानवर भी है जो हाइबरनेशन जिसे कहते हैं, वो सोए रहते हैं बहुत दिनों तक, तो वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि राह देखते रहते हैं कि ऋतु बदल जाए, अच्छा हो जाए सब कुछ, गर्मी आने लगे तो हम बाहर निकलें। इसी तरह हमारे बच्चे भी और सब लोग राह देखती है कि हम टॉयलेट में जाकर खेलें या तो बाहर जा सके, बहुत अच्छा समय आ रही है। तो हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं और उसी समय पर हम उपवास भी करते हैं। अब सोचो उपवास क्या है? हाँ, उपवास हम माँ के लिए क्यों कर, माँ के लिए, माँ तो सब, माँ तो अपने बच्चे के पेट भरा देखना देखनी चाहती होगी, तो माँ तो हमको भूखा नहीं देखना चाहती है, तो हम उपवास किस लिए करते हैं? उपवास में फायदा हमारा ही होता। हमारा फायदा कैसे होती है? देखो, साइंस कहती है कि 16 घंटा तक कोई भूखा प्यासा रह जाए तो इनके शरीर जो है वो बदलने लगती है, उनमें क्षमता है, शरीर में जो क्षमता है, तो वो जो बीमारियां हैं हमारे अंदर में वो निकलने लग 16 घंटा के बाद में। तो हम तो 24 घंटा रह जाते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी कभी। और उपवास भी कई तरह के हैं, कोई एक आहार, कोई अल्प आहार, कम आहार करते हैं, दो बार तीन बार, जिसका जो क्षमता हो, कोई बीमारी के कारण भी नहीं कर सकते तो वो अलग बात है, जिसका जितना क्षमता हो वो करे। वो निर्जल भी रह सकते हैं, वो एक आहार पर रह सकते हैं, अल्प आहार पर रह सकते हैं, दूध पर रह सकते हैं, फल आहार पर रह सकते हैं, कई तरह के, पर ये जो है हमारी फायदा के लिए है, हमारे जीवन में कोई बीमारी ना आए, क्योंकि ये पवित्रता के लिए है। हमारे जीवन में पवित्रता आए, अंदर से पवित्रता आए, हमारे शरीर में पवित्रता आए उपवास करने से, यह भी ये सब होती है हमारे जीवन में। मैं तो प्रत्यक्ष करके देख रहा हूं। तो ये है, ये भगवती माता हमको अवसर प्राप्त देती है। और ये जो दूसरा है जो अब हम मना रहे हैं आज, अब इस समय पर, तो ये भी इसमें भी परिवर्तन हमको देखने में मिलती है कि पतझड़ में जब पत्ते झड़ने लगते हैं, सब कुछ सूख जाते हैं, तो हम अपना आंगन वगैरह सब कुछ घर साफ करते हैं, आंगन साफ करते, सब कुछ साफ करते हैं। ये तो साफ बाहर का है, ये तो पवित्रता तो होना चाहिए। हम पूजा पर भी बैठते हैं तो सबसे पहले ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, है ना, तो वो करते हैं। तो पवित्रता जो है, हमारे अंदर के पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। अंदर के पवित्रता जो है, काम को क्रोध मद लोभ मोह वगैरह जो किसी से दुश्मनी है तो उसको कम से कम मनाने की कोशिश करो, उसको क्षमा याचना करो, या तो उससे कह दो कि मनाने का कोशिश करो, कुछ कुछ ना कुछ करो कि निकल जाए, है ना, ये सब कुछ हमारे जीवन में, तभी जाकर हम उत्थान के ओर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देखो, ये नवरात्रि जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत बहुत, अब सप्तशती में चले जाओ, सोचो तो जितना कथा है सप्तशती में हमारे ऊपर सब घटित हो रही है। काम क्रोध मद लोभ मोह, यही तो है हमारे जो शुंभ निशुंभ है और महिषासुर है और मधुकैटभ है, रक्त बीज है, ये सब राक्षस हमारे अंदर में ही है। हम तो बस ले देकर ये पूजा पद्धति तक रह जाते हैं। अब पूजा के बाद देखो, बुरा मत मानना पर मैं बोलने जा रहा हूं कुछ,
बच्चे भी देख राह देखने लगते हैं कि नौ नौ दिन बिना मांस मछली के हम रह गए, और कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा, कितना दिन और रोक कर रखना पड़ेगा। सोचो, अब जिस चार खंभे पर टिकी हुई है, सबसे पहला सत्य दया, तप सत्य दया तप और अहिंसा। तो ये अहिंसा जो है, बिना हिंसा के कोई मांस नहीं आती है ना, हिंसा करके तब मांस मिलती है। तो जब हिंसा करके मांस खाओगे तो अपना उत्थान कैसे होगा? भगवती माता के सभी संतान हैं, हम एक दूसरे को मारे तो कैसे हमारा उत्थान, भगवती माता कैसे हमको ऊपर की ओर ले जाएगी? तो ये सब सोचने वाली समझने वाली बात तो बहुत करनी है, पर ये बहुत लंबी हो जाएगी। पर मैं सभी को हार्दिक से शुभकामना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, हरिओम, जय श्री राम।

अति सुंदर रूप से। और पंडित जी जो न्यूयॉर्क अमेरिका से हम सबको अपना संदेश नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाए, ये कहावत तो आप जानते होंगे कि आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। दोस्तों हमारे साथ युवा राधा सिंह जी भी उपस्थित है, उनसे पूछूंगा, कहूंगा, आग्रह करूंगा कि कुछ संदेश हमारी यौंग्र के लिए भी और सुनावे नवरात्रि के अंतर्गत।

राधा सिंह जी जिन्होंने अपनी ओर से और जाकर के नवरात्रि के अंतर्गत में यानी कि हम सभी के लिए कुछ संदेश सुनाए हैं। हम एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में विवान से बातचीत किया जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं नवरात्रि में और क्या जानते हैं नवरात्रि के अंतर्गत।

सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत देश से पंडित पतंजलि से, जो हम सबके देश में कितने बार आकर के अपना और संदेश यानी कि सुंदर कथन हम सबको सुनाए हैं, वहाँ कोशिश कर रहा हूँ पंडित पतंजलि जी से, जिससे आग्रह करूँगा कि भारत देश से और हम सबको अपना शुभ संदेश इस नवरात्रि के अंतर्गत में सुनाने का कृपा करें।

भवन्तु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नवरात्र वर्ष में चार हैं लेकिन दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष हैं। जो दो गुप्त हैं लोग इन्हें कम जानते हैं लेकिन दो जो प्रकट हैं, एक शारदीय नवरात्र एक वासंतिक नवरात्र। तो ये दो नवरात्र हैं जो लोग प्रायः जानते हैं। तो दो नवरात्र की

चर्चा बहुत है, वर्ष में दो बार है, तो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र। और नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है और उनकी आराधना, पूजा, जप, मंत्र इत्यादि किया जाता है। इससे भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बल बुद्धि सब प्रदान करें। इसलिए विद्यावंतम लक्ष्मीवंतम, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मी।

तो हम भगवती की आराधना करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं। तो भगवती की आराधना माँ दुर्गा की जाती है ये 9 दिनों में। तो ये दुर्गा की आराधना और नवरात्र पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है, बहुत ही अच्छा महोत्सव है। इसमें लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो ये प्रार्थना हम करते हैं कि आप भी इस नवरात्र में कोई शुभ कार्य करें, शुभ संकल्प करें, यही प्रार्थना के साथ। और भगवान से, दुर्गा से प्रार्थना करें क्या कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हमें माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करें माँ दुर्गा से, उन्हीं के चरणों में वंदन करें और भगवती से प्रार्थना करें, आराधना करें। तो हम आप मिल करके भगवती से प्रार्थना करें, यही शब्दों के साथ वाणी विराम करते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।

सुनने वालों, इस चून से आपको भी मालूम हो गया कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति की ओर आ चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले पंडित विश्वानंद लक्ष्मण जी, जो न्यूयॉर्क अमेरिका से अपना संदेश को हम सबको सुनाए, पंडित पतंजलि पांडे जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हम सबको अपना सुंदर संदेश को सुनाए, श्रीमती राधा सिंह जी जो अपने ओर से हमारे यौंग्र के लिए कार्यक्रम में सहयोग दिए, और छोटे विवान ने जो अपना संदेश को हम सबको सुनाए। मैं हूं आपका सेवक संजय, और आशा यही है कि इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त हुए। आशा यही है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम आप सुनते रहना। आप सभी को एक शुभ नवरात्रि प्रस्तुत है। नमस्कार।

0: వక్రతుండా మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురుమే దేవ సర్వకార్యషు శర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక్ వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రిష్టా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब यहाँ फिर उपस्थित हो गए इस स्टूडियो में ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर। कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं आज शांता जी, जो अपने ओर से और हम सबका संदेश देने वाले हैं। शांता जी, क्या संदेश है, फिर हम आज का और विषय उसके बारे में बात करेंगे।
1: जय माता जी, जय माता दी, करते जाओ शाम सवेरे माता, आपने मिटा दिया मेरे जीवन के सभी अंधेरे। जय माता जी, यहाँ से हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश शुरू होने को आ गई है और आपको मेरी यानी कि शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम यहाँ से आप तक पहुँचे।
0: दोस्तों, शांता जी ने अपना और यानी कि संदेश को सुना चुके हैं और आज कार्यक्रम में सहयोग देने दे रहे हैं बबली जी।
2: सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार, जय माता दी।
0: ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और शांता जी, इसमें आप कुछ और कहने वाले हैं कि विषय क्या है आज का?
1: विषय तो जैसे इस वक्त में नवरात्रम चल रहे है, तो नवरात्रम के विषय भी आज भी रहेगा।
0: तो नवरात्रि जैसे चल रहे हैं दोस्तों, तो हम सब क्यों ना उस ओर छलांग लगा देते हैं, क्योंकि समय कम है और संदेश शायद ज़्यादा होगा। तो जो लोग अपने घर से और ये कार्यक्रम को बैठ के सुन रहे हैं, तो हम एक सुंदर सा गीत के ओर बढ़ रहे हैं और देखा जाए कि आज का और नवरात्रि के अंतर्गत विषय जो नवरात्रि रखा गया है, उसमें कौन सा संदेश हम सबको और मिलने वाले हैं। हम बढ़ते हैं एक सुंदर गीत के ओर।

0: ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम है और हम सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और सुंदर सुंदर गीतों के साथ ये कार्यक्रम को सजाया जाएगा। और शांता जी, क्या नवरात्रि से पहले आप किस प्रकार की तैयारी करते हो?
1: हाँ जी, वैसे तो हम तो सबसे पहला है कि हम उत्सव में रहती हूँ, मंगन में रहती हूँ, क्योंकि वैसे ही नॉर्मल मंगन में रहती हूँ और ऐसे भी हम मंगन में रहती हूँ, क्योंकि ये एक पर्व या त्यौहार है जहाँ पर हौसला होता है कि कोई के यानी कि माता की सेवा करने के पर उनका प्यार मिलता है, उनका सेवा करना पड़ता है, सभी कुछ मिलता है कुछ करने के लिए, इसमें बहुत आनंद मिलते हैं मेरे को।
0: ये कार्यक्रम जो हम सब इस समय यहाँ सजाया जा रहा है दोस्तों, तो शांता जी को आनंद मिलता है, और बबली जी, इसमें ये नवरात्रि से पहले आपका तैयारी में और क्या करते हो आप?
2: मैं तो नवरात्रि से पहले घर की सफाई करती हूँ, पहले सोचती हूँ घर स्वच्छ होगा तो फिर मन भी स्वच्छ होगा। तो
0: यानी कि सफाई आदि करते हैं। और शांता जी, आपने मुझसे पूछा नहीं मैं क्या करता
1: हूँ। वही तो मैं देख रही तेरी तरफ, अगर आप भी मौका दे तो मैं भी पूछूं आपसे, संजय जी आप क्या कर रहे हो?
0: बस यही कहना चाहूँगा शांता जी कि हम नवरात्रि जब प्रारंभ हो जाए ना, तो बस यही एक ही चीज सिर में रहता है कि बड़ा निराला, बड़ा ही पावन, मन भवन एक नाता, एक तरफ है सारी दुनिया तो दूसरी तरफ है माता, यही बस यही रहता है सिर में। और नवरात्रि शुरू होता है धीरे धीरे, और भी नवरात्रि का अंत के ओर हम सब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ और संदेश हम सब आपके लिए लेकर आने वाले हैं।

0: जय जय माँ, जय जगदम्बे माँ। और शांता जी,
1: हाँ,
0: जैसे कि आपने कह रहे थे कि आज और कुछ संदेश हम सबको और सुनाने वाले हैं आप, कौन सा संदेश आप हम सबको सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, वैसे तो हम अकेले नहीं सुनाएंगे, हम यहाँ तीन हैगा, तो यहाँ हम तीन अपने अपने बारे में सुनाएंगे। तो हम पहले सुनाते हैं कि नौ दीप जले नौ फूल खिले, नौ दीप जले नौ फूल खिले, रोज नई बहार मिले, नौ रात्रि के इस पर्व पर आपको यानी कि हम सभी को माँ का आशीर्वाद मिले। तो यहाँ से हम के एक प्रश्न है, तो बबली जी, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कौन सी उपाय करनी चाहिए? ज़रा हमारे मुझे भी बताओ, हमारे साथ है, साथ है। तो वैसे हमारे श्रोतागण जो भी है सुन रहे पावन हिंदुस्तानी रेडियो के, उन सभी को ये उत्साह है जानने के लिए, तो ज़रा आप अपना मुखारबिंद से जरूर सुनाए।
2: शांता जी, मैं माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कोशिश करूँगी कुछ सुनाने के लिए। तो माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दुर्गा भक्तों द्वारा सच्चे मन से की गई व्रत पूजा से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन यदि कुछ उपाय किए जाएं तो देवी माँ जातक पर विशेष कृपा करती हैं।
1: अच्छा, हाँ, जातक का हजार हम पूछे आपसे, तो
2: जातक का मतलब इंसान, मनुष्य।
1: मनुष्य जो भी पूजा प्रार्थना करते हैं मन चित से लगाकर, माँ के जो ध्यान धरते हैं उनकी मनोकामना जो है, शुभ शुभ मनोकामना जो है वो पूर्ण होते हैं।
2: हाँ जी।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बात है।
0: शांता जी, इस पे मैं भी कुछ कहना चाहूँगा।
1: हाँ, जरूर।
0: आप तो ये जब मंदिर जाते हैं ना, तो या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपे न संस्थिता, ये जरूर साथ में पंडित लोग के साथ कहते होंगे ना,
1: हरदम या सुनाते हैं इस
0: तो
1: मंत्र में भी आते हैं।
0: इसका भी खुलासा हो गया कि हम क्या कहते हैं।
1: हाँ, तो जरा आप भी बता दे।
0: नहीं, बस यही जैसे कि बबली जी ने अभी कहा है कि जातक का मतलब क्या है।
1: अच्छा।
0: और इसी प्रकार से उसे भी हम सब मिल करके गवाते हैं, पर कभी काल के हम सब कितने बात संस्कृत शब्द होते हैं और हमें नहीं पता होते, पर हम सहयोग देते रहते हैं। और ऐसे भी कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सब कुछ ना कुछ संदेश और लेकर पहुंचते हैं, जिसमें हमारे जीवन का ज्योति जो है, जीवन का ज्योति में थोड़ा और प्रकाश आ जाए, यही लक्ष्य लेकर ये कार्यक्रम बनाया जाता है। और इसमें कुछ ना कुछ संदेश लेकर के आते हैं हम सब। और कौन सा प्रश्न आप करने वाले हैं शांता जी?
1: वो ये है कि माँ दुर्गा के कितने स्वरूप है बबली जी, आपको पता है? हाँ जी, आपको पता है, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए, तो फिर भी पूछ लेती हूँ हमारे श्रोतागण के जो भी पूछना चाहती है।
2: माँ दुर्गा के नौ स्वरूप है
1: जी,
2: शांता जी।
1: अच्छा, माँ दुर्गा के नौ स्वरूप है संजय जी, और कौन कौन सी है अगर आप चाहे बताने के लिए, तो हम भी उत्साह है सुनने के लिए भी। संजय जी,
0: शांता जी, ये तो आपने पूछे कि कौन स्वरूप है माता के, तो ये गत सप्ताह के कार्यक्रम में और हम सब भी सुने थे कि माँ के नौ स्वरूप शुरू होता है।
1: पहली है शैलपुत्री, पहला जो है माँ के स्वरूप शैलपुत्री, और दूसरी है ब्रह्मचारिणी,
0: तीसरी
1: चंद्रघंटा,
0: चौथा
1: है कुष्मंडा, और पांचवा है स्कंद माता, सैस्दा है कत्यायनी, सातवा है कालरात्रि, आठवा है महागौरी, और नौवा आखिरी जो है सिद्धिदात्री। ये नौ माता के नौ स्वरूप है जो अलग अलग, जो हर एक रोज इनकी माँ की पूजा की जाती है।
0: हाँ जी दोस्तों, तो हम क्यों ना एक सुंदर से माँ के भेंट की ओर बढ़ेंगे, जिसे हमें जैसे कि शांता जी ने कहे कि माँ के नौ रूप है, ये तो शांता जी ज़्यादा तादाद में हम सभी जानते थे, और आपने उसे कह के और भी हम लोग के थोड़ा से ख्याल करवा दिए, पर इसमें संदेश और क्या है, जरूर अभी उस ओर भी बढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं एक माता का सुंदर सा भेंट के ओर।

0: भक्तों के दर्शन दे दिए एक छोटी सी कन्या। शांता जी, अभी आपने हम सबको बताए कि माँ के नौ रूप, और नौ रूप के बारे में आप नौ नामों को और हम सबको बताएं, फिर भी उन नामों पे और क्या संदेश है? अगर उस पे हम सबके कुछ और संदेश दे सके तो जरूर बताए।
1: जी संजय जी, जैसे अभी ने हम गीत से पहले जो हमने कहा ना कि माता के नौ स्वरूप होते हैं, तो नौ स्वरूप में से पहला स्वरूप है जैसे कही थी शैलपुत्री माँ, तो उसको हम थोड़ा से दश में बता दे। ऑफ द एर्थ दाह फन नवरात्रि वर दुर्गा माता फॉर एर्थ इन द फॉरम फन शैलपुत्री दुर्गा फन दोख्तर फन हिमालया। शैलपुत्री इज एन अब्सोल्यूट फॉरम फन मदर नेचर एंड वर्ड ओक वेल देवी पार्वती हनुम द मेथ सेल फन महादेव एंड मदर फन गणेश एंड कार्तिके जी। In the forum van Shailputri wordt Durga Mata aanbeden als een jong meisje, een kind, en zit zij in de eerste fase van de vrouw. Shailputri staat symbool voor liefde, loyaliteit en standvastigheid. Toen je had छोटा रूप में डच भाषा में हमने आपसे बता दी, तो यहाँ से हम बढ़ चलते हैं सुनने के लिए हमारे अपने भाषा में, हिंदी भाषा में, जो हमारे जो साथ में है बबली जी, उनके मुखारबिंद से हम भी सुनेंगे कि और क्या वो बता रही है।
2: माँ शैलपुत्री जी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ के भक्त इस दिन पीला वस्त्र पहनकर उन्हें घी चढ़ाते हैं। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से व्यक्ति को हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है।
0: शांता जी,
1: हाँ जी,
0: जरा ये तो बताइए दूसरा दिवस वाला।
1: हाँ, वही मैं शुरुआत करने को जा रही थी। दूसरा दिवस के है ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी। द्वैत फॉरम फॉर दुर्गा माता इज ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मावती कंद हीर मेडिटासी तने तपस्या। ब्रह्मचारिणी स्लीप यार लंग ऑफ द फ्लोर फन हेड बोस ऑन एन ओपन हेमल ओम हर तपस्या मेट सुक्सेस आफ्टर ओंदन सो फरदीन द सद नाम तपस्चारिणी ऑफ ब्रह्मचारिणी। देश तपस्या फॉर ब्रह्मा ओम शिवाजी आस हर एक नोट krijgen. Brahmacharini wordt op de tweede dag van de Navratri aanbeden voor deugzaamheid, vrede, welvaart en adel. Haji.
0: तो बबली जी, इस पे ब्रह्मचारिणी माता के अंतर्गत आपके ओर से क्या संदेश है?
2: मेरी ओर से यही संदेश है कि माँ ब्रह्मचारिणी को उनके भक्त हरे वस्त्र पहनकर शक्कर का भोग लगाते हैं। इस दिन माता को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इन खास चीज़ों का दान करने से आयु लंबी होती है।
1: चीनी और शक्कर, बबली जी आप थोड़ा से इसका डिफरेंट बताना। चीनी क्या है? चीनी तो शक्कर जो हम रोज किचन में कुकरों में इस्तेमाल करते हैं, और ये?
2: हाँ जी, और शक्कर है, गुड़ है, गुड़ से शक्कर बनती है।
1: गुड़ से, और आपने एक बात और कहा, चीनी और
2: शक्कर।
1: हाँ, चीनी और शक्कर।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: चीनी और शक्कर।
2: चीनी होती साइकर,
1: हाँ,
2: और शक्कर होती है केन से बनता है गुड़
1: जी,
2: और गुड़ से बनती है शक्कर।
0: तो अच्छा। ये तो होता है शांता जी, अगर मैं आपसे कहूँ।
1: हाँ जी।
0: तो एक बार ऐसा हुआ, जैसे कि बात हो रहा है तो गुड़ क्या, तो मैं हरिद्वार से और गाड़ी से निकल करके और दिल्ली को आ रहे थे
1: जी।
0: तो आ रहे थे तो वहाँ ड्राइवर ने पूछा हमसे कि भाई, और गुड़ खरीदना है? नहीं, वो वहाँ खरीदना नहीं बोला, बोले गुड़ लेना है। तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं। तो मैं गया वहाँ पर, वही रास्ते पे पड़ता है जहाँ पर लोग गुड़ बनाते हैं। तो वहाँ जा कर के हमने देखा कि किस प्रकार से गुड़ बनाया जाता है। सो फिल हम तो एरक नॉक्सेट्स, अभी तक तो सोचा जाए कि हम सब इतना दूर पहुँच गए, पर ये तो भी हमारे परिस्थिति भी दिखा चुके कि हम लोग सोचते थे कि हम सब बहुत दूर पहुंच गए हैं, आया एक महामारी सबके और नीचे कर दिया। और इसी प्रकार से ये संदेश मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वहाँ मैं जब गया
1: हाँ जी,
0: तो देखा कि किस प्रकार से गुड़ बनाया जाता है। अभी तक जो हांतवर्क अतिस अलीमार हांतवर्क और वहाँ पर जिस प्रकार से केन को और उसमें से जो जो रस निकाला जाता है, निकाल करके उसे और कैसे बनाया जाता है, उसमें से कितना और खेमिस प्रोडक्ट निकल आते हैं।
1: वो गुड़ जो है वो केन से बनता है ना,
0: केन
1: गन, उसका गन्ना, रस जो है गन्ना के रस निकाल करके उसको पकाते हैं।
0: पकाते हैं सिर्फ नहीं, बर और काम हो जाता है शांता जी, उसमें कुछ और मिलावट भी रखा जाता है, क्योंकि एक आदमी वहाँ एक रस्सी पकड़ के खाली पैर से अपना दबा रहा था कुछ, तो बोले मैंने प्रश्न किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो बोले मैं इसका केमिकल बना रहा हूँ, शायद असली खेमिस नहीं रहा होगा पर कुछ बना रहे थे, उसमें डाला जाता है। और हेल बिसोंदर मनीर फान अहमद फरफार्दख फान गुड़, जो अभी तक भारत में और कितने तादाद में हांतमातक बनाया जाता है। चलो हम सब एक गीत के ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम तीसरा दिवस के अंतर्गत में संदेश सुन लेते हैं, तो फिर और आगे बढ़ेंगे। शांता जी, तीसरा दिवस जो नवरात्रि के होता है तो वो किस माता के नाम से और हम सब भजते हैं?
1: तीसरा माता के नाम है चंद्र घंटा। The third form from Durga Mata is Chandra Ghanta, had four hoof is Batek med the man sickle Chandra. The leg of the form from a temple bell Ghanta. This isliye naam dhara Chandra Ghanta. Fandar the naam Chandra Ghanta. Dur Chandra Ghanta ta anbedan warden ala negative inertian so well. Innerlijk als uitwendig vernietig. Chandraghanta brengt hiermee zuiverheid, geluk, kennis en vrede. Chandraghanta staat altijd klaar om het kwaadaardige te vernietigen. Maar voor een bhakt verschijnt ze altijd als de vriendelijke en medelevende moeder. Dus jis swaroop mein aap maa ko yaad karoge, wahi swaroop mein aap ko maa apna darshan deti hai.
0: Heel mooi vertelt Shanta ji jo apna sandesh maa Chandra Ghanta ke baare mein. Par Babli ji, aapke is pe kuch aur sandesh hai ya हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर? चलो कुछ जरूर आपके पास इसके बारे में संदेश होगा।
2: हाँ जी जरूर है। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर और मिठाई। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से माँ चंद्रघंटा खुश होती हैं और व्यक्ति के सभी दुखों का नाश करती हैं।
0: ऐसा संदेश देखिए सुनने वालों, ये बात हो जाता है कि हम सब ये संदेश जो कहीं से निकाला गया है और हमारे विशेषज्ञ लोग हम सब के लिए धरते हैं और इसे हम सब आपके साथ बांट रहे हैं, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो शांता जी, ऐसा क्यों ना क्योंकि हम सब और धीरे धीरे अभी एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
1: Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertensi, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. Suha 9 bije se lekar sham ko 5 bije tak. Op telefoonnummer 073-625-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl. Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Dosto, hum sab karyakram Jyoti ka prakash mein yahan studio mein upasthit hue hain aur aapke liye kuch na kuch sandesh jarur hum sab sunane wale hain, rakhne wale hain aur Shanta ji bhi aur sandesh lekar aaye kyunki abhi tak to Shanta ji
4: हाँ
3: माता के संदेशों में सिर्फ 3 ही के पास पहुंचे हैं आप और है नौ ना
4: नौ माता के स्वरूप के यहाँ हम विज्ञान करेंगे तो अभी तो समय है तो समय के अनुसार हम बढ़ते ही चलेंगे
3: नौ माता का नौ स्वरूप शांता जी एक यहाँ संदेश आया है
4: हाँ बताओ जी
3: संदेश आया है कि जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है जो भी बोया है वो ही और निकलता है वो निकलना तय है और ऐसा इसके बारे में क्या ख्याल है आपका
4: ये सिंपल से बात है कि अगर जैसा आप करोगे जैसा मैं भी करूँगी वैसा ही फल मिलेगा जैसे करनी वैसे भरनी कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जस कही तासु फल चाखा ये एक बूढ़ी माँ हरदम कहती थी हालांकि वो बूढ़ी माँ अब नहीं है पर ये शब्द हमारे कानों में दिमाग में बैठ गए हैं तो हर एक का काम करने से पहले कोई हैंडलिंग लेवे से पहले ये शब्द कान में गूंजने लगते हैं
3: अच्छा देखो ये बढ़िया बात है कि अपने पुरखों से सीखे हुए और कोई भी कार्य आप करें तो वो पुराने बातें वो बातें जो संदेश रूप से हम सबके पास दिया गया है
4: कवच बन के खड़ा हो जाता है
3: बबली जी इस पे क्या संदेश है आपका
5: मेरा भी यही मानना है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा तो आज हम जो काम करेंगे उसका फल हमें बाद में जरूर भुगतना पड़ता है।
3: तो जरूर हम सब आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे। कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए और विषय रखा गया है नवरात्रि, और नवरात्रि के अंतर्गत में शांता जी और बबली जी काफी संदेश लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं स्टूडियो में। और
4: बिल्कुल हम सब पूरी तैयारी के साथ यहाँ
3: पूरी तैयारी के साथ और पिटारा से भजनों के लेकर के सुंदर सुंदर गीतों के लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। तो दोस्तों अभी कार्यक्रम तो चल रहा है, आप सुनते रहना कौन कौन सा संदेश आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं हम सब, क्योंकि ऐसा ना हो। शांता जी ये भी संदेश आया कि ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें जाने का नहीं। तो आप जो आ ही गया है तो लोग जरूर इंतजार में हैं, और क्या संदेश है हम सबको सुनावे।
4: कहते हैं जगत पालनहार है माँ, जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ। तो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं फिर ददाख जो है माँ दुर्गा के स्वरूप है, और वो है कुशमंडा, कुशमंडा माता के फिर द स्वरूप है। द फिर द फॉर्म फॉर दुर्गा माता इस कुशमंडा एंड वॉर्थ ओक वेल द आख हाँ दख देवी अस्त बुझा खनुम्त। हाँ, दस आठ गो हाट है उसको अष्ट बुझा कहते हैं। द नाम कुशमंडा बस्तात अत द्रि संस्कृत वर्दन कु यानी कि क्लैन कुशम वारम त एन इनर्शी एन अंडा बतेकन कॉस्मिस यानी कि ऐ ऐ अंडा स्पर्श अंडा। तो है अंतलित करल जाए तो ऐसे आते हैं, और नाम है कुशमंडा। फ्रै फर्तौत आज स्केपर फन हेत हेलाल खलोफ्त वर्ड दैट कुशमंडा इन द कैरन फन द सोन फर ब्लेफ एन फन हीर अत हेत हेल सोन स्टेलसल उंदर कंट्रोल हेफ्त सै स्त्रालत आल रेख्तेंगन ओप नेत आज द सोन। क्या बात है, दूर कुछ मंडा त अनबेदन वर्ड आला सिक्त एंड लेट फर्नितख एन क्रैक्ट एन लेवन एनर्जी रेस्पेक्ट क्राफ्ट एन गेसोंटेड। क्या बात है कुछ मंडा जी के।
3: बबली जी इस पे आपका क्या संदेश, वत फुखिय हीर बै जो माँ कुशमंडा के अंतर्गत में, क्योंकि अभी हमने सुना है कि आपने हर बार माँ का भी एक अलग अलग रंग होता है ना।
5: हाँ जी, क्योंकि माँ अलग अलग कपड़े धारण करते हैं, और आप जानते हैं शांता जी कुशमंडा संस्कृत में क्या है,
4: बता दे तो बहुत अच्छा था।
5: कुशमंडा कोहड़ा को भी कहते हैं।
4: अच्छा, क्यों?
5: क्योंकि कुशमंडा संस्कृत से फिर हिंदी में आया। हिंदी में कहते हैं सीताफल, और पेठा भी कहते हैं।
4: पेठा, हाँ अच्छा।
5: और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुशमंडा जी का दिन होता है, और उनको मालपुआ का भोग लगाया जाता है।
4: और ये मालपुआ क्या होता है?
5: मालपुआ जैसे आप लोग पाना कूक कहते हो,
4: अच्छा हाँ,
5: वैसे ही मालपुआ है। उसको तवे पे भी बना सकते हैं,
4: हाँ,
5: और घी में भी तल सकते हैं,
4: अच्छा,
5: छान भी सकते हैं।
4: और जैसे लपसी रोटी बनते?
5: नहीं नहीं,
4: अलग कुछ अलग सा है।
5: हाँ हाँ हाँ,
4: अच्छा अच्छा
5: हाँ, थोड़ा थोड़ा लपसी रोटी जैसा भी है, लेकिन उसमें आटा छान के और उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं। तो मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता के भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर।
4: अच्छा, आपने कहा नारंगी, नारंगी ये नारंगी खाने वाला?
5: हाँ जी, जैसे नारंगी का रंग है
4: और रंग है उसका,
5: हाँ, वैसी। तो वो वस्त्र धारण करके
4: यानी ओरायो क्लर, क्लर,
5: हाँ जी सही बात। और भक्त नारंगी वस्त्र पहनकर माँ कुशमंडा जी की पूजा करते हैं। इस दिन मालपुआ का प्रसाद बनाकर ब्राह्मण को दान करने से भक्तों की बुद्धि का विकास होता है।
3: संदेश और आ गया, और आप बढ़ने वाले हैं अगले माता का और संदेश की ओर। पर ये अगर आप चाहे तो मैं सुना सकता हूँ।
4: बिल्कुल, हमारे साथ सभी श्रोतागण लिसनर जो है सुने वालों
3: सभी सुने वालों जो कि हमारे पास बहुत से बरिख आते रहते हैं, और कुछ ना कुछ जो सुनाने वाला होता है जरूर हम सब आपके लिए जरूर रखते हैं। और यहाँ पठाया गया है कि कुछ बातें का मतलब है, कुछ बातें का मतलब है और कुछ मतलब की बातें।
4: ये समझ समझ के बात है, समझ समझ के बात है।
3: एक बार फिर दोहराता हूँ कि कुछ बातें का मतलब है और कुछ मतलब की बातें। जब से ये फकर समझा जिंदगी बहुत आसान हो गया। तो अभी इसके बारे में और चर्चा किया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो लग रहा है दोनों सेम टू सेम, ऐसा है कि ना?
4: अगर गौर से ना सुने तो ऐसा ही लगता है सेम टू सेम, मार उसमें पर एक इसमें, दो शब्द है जो उसमें विकार लाती है,
3: विकार ला देते हैं। जरूर आगे अभी उसके बारे में सुनाया जाएगा। पर दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो नवरात्रि के अंतर्गत है, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: माता रानी का ध्यान धरिए और काम चाहे कोई भी करिए ना शांता जी।
1: हाँ, कहते हैं काम करते चलो नाम जपते चलो।
0: काम करते चलो और नाम जपते चलो दोस्तों।
1: हाँ, आप सोचे कि ये कैसे मुमकिन है? तो जैसे जो इंसान गाड़ी हाँकता है ना, तो गाड़ी हाँकते हैं तो पैर अपना काम करता, हाथ अपना काम करता, आँखें अपना काम करता है, एक साथ में उसी के साथ गाड़ी हाँकते रहे, चलते रहते, इसी एक ऐसे बना ले कि काम करते चलो नाम जपते चलो।
0: आप अपना काम करते चलो और नाम लेते चलो। आज कार्यक्रम का विषय जो नवरात्रि है, और शांता जी क्या संदेश है, क्योंकि आपने तो नौ माह का अवरूप हम सबको जरूर सुनाए थे, पर उसका और क्या संदेश है हम सबको सुनाने का, और कोशिश करो।
1: हाँ जी, बताने से पहले ये मैं कहूँगी मूर्ति के बारे में, हालांकि हम सभी माँ भगवान के दूसरा स्वरूप है, अगर आप मानो तो, अगर नहीं मानो तो ये आप पे हम निर्भर छोड़ते हैं। और यहाँ हम मूर्ति के बारे में कहते हैं कि मूर्ति मंदिर में रखी हो या घर में या सड़क के किनारे, उनकी इज्जत कभी कम नहीं होती।
0: मूर्ति चाहे घर में हो चाहे सड़क के किनारे, उनके मंदिर में
1: उनकी इज्जत कम नहीं होती।
0: सही बात, आप जहाँ भी चलो, खास करके इंडिया में देखो पेड़ के नीचे भी रखल रहे हैं
1: जी,
0: और तो वहाँ कम से कम आप जय माता दी तो कहेंगे
1: जी। और भारत तो वैसे ही ना, अगर आप यहाँ हमारे बगल के देश में भी चला जाओ ना, बेल्जियम या डचलैंड, तो वो पे भी आप ऐसे कॉर्नर पे, सड़क के कॉर्नर कोने में ऐसे जहाँ क्रॉसिंग रहे, तो आप भी देखोगे यीशुस क्रिस्टस के भी मूर्ति, मुदर मारिया,
0: चाहे जिनका
1: मुदर मारिया के भी
0: संप्रदाय के हैं,
1: खेतों में भी धरा रहता है, अच्छा लगता है देखने के लिए, और ऑटोमेटिक से आप उनका इज्जत करोगे।
0: ये कहावत, ये भी कहावत है शांता जी, क्योंकि चाहे गिरजाघर, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, कोई भी तीर्थ स्थान पे आप जाओ तो अपना सिर झुका करके और प्रणाम करते हैं ना,
1: वो तो है।
0: तो व्यक्तिगत बाती चलते रहेंगे शांता जी, और हमारे कार्यक्रम का जो संदेश है आज नवरात्रि, उसके अंतर्गत हम उस ओर के ओर हम बढ़े, तो क्या संदेश है अगले माता का?
1: हाँ, तो है ये माता हैगा, हम अगर देखे तो पांचवा दिन वाली है, और माता का नाम है स्कंड माता, है ना बबली? स्कंड माता, स्कंड माता, स्कंड माता वर्ड फाक ऑफ बिल्ड मेथ हर सोन सेतंत इन हर शोत से इज द मदर फन कार्तिके ऑफ वेल स्कंड एंड नेम सो ओक हर भक्त इन द शोत एंड बीत स खनेखन है। स्कंड माता स्टैट सिंबल फॉर फ्रुक्टबारहेत मुदरशाप एंड रिलेशन टुसन मुदर एंड किंड, कितना अच्छा। दो स्कंड माता का अनबेदन वर्दन आल फरलांगंस फरफोल्ड एंड एरफार्ट मैन इन देस फरअंदरलक वेरल गफोलंस फॉर फ्रेडे एंड गेलुक। हाँ तो सुनने वालों, हमने यहाँ थोड़ा से डच भाषा में कह दी, और कितना मैं पढ़ती हूँ तो मुझे आनंद आती है।
0: तो आप हम सबके सुनाते हैं, और दोस्तों बबली हाँ, जी आपके ओर से क्या संदेश है माँ स्कंद माता के अंतर्गत?
2: पांचवा दिन माँ स्कंद माता जी का होता है। एक दिन उजला वस्त्र पहनकर माता रानी जी को केले का भोग लगाने के बाद ये प्रसाद किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए,
0: क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि सबके अलग अलग रंग होता है। तो शांता जी, मैंने इस बार तथा पिछले साल से मेरे ख्याल से मैंने देखा हूँ कि जैसे कि कहीं दुर्गा पाठ हो ना
1: जी,
0: तो वहाँ रंग बिरंगी और रंगों से और झंडी का चढ़ाया जाता है।
1: उसके बारे में आप मुझसे प्रश्न करोगे तो मैं उस
0: नहीं, नहीं, ये एक नया चीज, क्योंकि मैं पहले आगे से नहीं देखता था और आजकल देखो तो यही माध्यम से लोग वो रंग का भी और झंडियों को बनाने लगा मेरे ख्याल से।
1: हो सकता है, मुझे नहीं पता,
0: ये भी एक व्यक्तिगत बात है और हमें भी ये इसके बारे में, पर अब आजकल ये चलने लगा है
1: इसके बारे में, उस पर जानकारी लेना चाहिए। हाँ,
0: कभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बबली जी कुछ कहने वाले हैं।
2: जैसे भारत में रंगोली बनाई जाती है अलग अलग रंगों से, तो यहाँ पर मेरे को लगता है झंडी जड़ाई जाती है अलग अलग रंग से। हाँ जी, अब शुरुआत हो गई है।
0: हाँ, ये क्योंकि पहले ऐसा नहीं होते थे, पहले हम नहीं देखा था कभी।
1: लाल
0: रंग के सुरीनाम में भी ऐसे लाल रंग का और सब होते थे। अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि उस पे नाम भी लिखा होता है कि कौन माता का नाम के साम नाम से, तो शायद ये जानकारी हम सब
1: परिवर्तन हो गए
0: जरूर हम लोग। इस कारण तो शांता जी ज्योति का प्रकाश भी बनाया जाता है, हमारे जीवन के ज्योति में और भी प्रकाश आए, और हम सब के लिए खास करके हमारे विशेषज्ञों जो सुंदर सुंदर संदेश खोज खोज करके रखते हैं और हम सब यहाँ लेकर उपस्थित होते हैं, उसमें हम सब का भी कुछ न कुछ नया चीज़ों के और सुनने को मिलते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, क्यों ना शांता जी अगला माता का और कौन सा दिन पे हम लोग पहुँचे?
1: हम देखे तो हम पहुँचे हैं सैजद दाह, छठा दिन है, छठा दिन कहते ना सैजद दाह। हाँ, तो सैजद दाह है माता कात्यायनी की। कात्यायनी इज द सैजद फॉर्म फ्रॉम दुर्गा माता एंड स्टार्ट बकेंट अस क्राइस्टर, एन फ्रॉम द मेस्ट गवेलदादिगस्ट फॉर्म फ्रॉम देवी पार्वती। कात्यायनी इज vernoemd naar een rishi genaamd Katjain. Hij had geen nakomelingen en wenste dat Durga Mata als zijn dochter op aarde zou komen. Dat gebeurde en zij kreeg de naam Katjaini.
0: Yani ki rishi Katya ke aur wo bahut tapasya karne se aur ja kar ke maa aur Katjaini Katya ke ghar mein janam liya na?
1: Na. उसको संतान नहीं थी।
0: कैसे हुआ तुम?
1: हाँ, तो जहाँ की माँ उनका बेटी बनकर धरती पे आई।
0: ओके ओके, इस हाँ। प्रकार से तो कात्यायनी नाम से और वहाँ पर प्रसिद्ध है
1: तो ये माँ कात्यायनी नाम से और उनका ऋषि के नाम जो इसमें जोड़ा गया है। कात्यायनी इज द सेस द फर्शाइनिंग फन दुर्गा माता एंड स्कैंगस्टर फन द फिर ले फंस दुलन, यानी कि धर्म एथेंटिक एंड मोरल, अर्थ मटेरियल रेगडोम, काम यानी कि खनोत एंड ले फंस प्रयुक्त एंड मोक्ष स्पिरिचुअल फरलोस्टिंग। आप हम ये चार बातें हर हमेशा सुनते हैं हमारे विद्वानों के मुख से, और ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हम हर शायद सुनते हैं जब कोई प्रवचन ऐसे कम होती है, तो इसके बारे में आपको यहाँ से बताया गया थोड़ा से छोटा स्वरूप में। धर्म हैगा, धर्म के मतलब है इथेंटिक एंड मोरल, और अर्थ है यानी कि मटेरियल राइटम, काम को कहते हैं खनोत एंड लेफंस फ्रेड, और मोक्ष को कहते हैं स्पिरिचुअल फरलोसिंग।
0: इस प्रकार से और शांता जी हम सबको संदेश दिए। बबली जी, इस पे आप क्या और जोड़ना चाहते हो?
2: मेरा कहना तो ये है कि माँ कात्यायनी जी की इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और शहद का भोग लगाना चाहिए।
0: शहद जो होनी कहा जाता है ना?
2: हाँ जी, क्यों शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है।
1: हाँ, उसका भोग लगाने के लिए।
2: हाँ जी, माँ को भोग लगाने से।
1: माँ के भोग लगाने से।
0: ओ, ऐसे बात है।
2: नहीं, अगर हम शहद खाएं भी रोज,
1: अच्छा
2: पिए, तो उससे हमारे सौंदर्य में भी थोड़ा फर्क होगा।
1: वही तो हम सोच रहे थे, तकल से शुरुआत कर दे यात्रा से।
2: जरूर जरूर
0: जरूर, क्योंकि शहद भी एक औषधि होता है ना, और खास करके जब हम लोग के खोखी आदि होती है ना
1: जी,
0: हाँ खांसी,
1: तो उसमें हमने सुना है अगर उसमें नूत मुस्कात उसमें घोर के।
2: हाँ जी, नूर मुस्कात भी डाल सकते हैं और खैम्बर पाउडर भी, तो या काली मिर्च वगैरह, हाँ। तो उससे खांसी दूर भाग जाती,
1: भाग जाता है, गला साफ हो जाता है।
2: हाँ जी,
0: छेतवा यानी सेसदा दाख के, और जैसे कि बबली जी ने और हम सबको बताए, हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: शांता जी, जैसे कि लग रहा है कि हम सब का गीत जो और यहाँ आकर के समाप्ति पे पहुँच चुके थे, तो हम कार्यक्रम, उसके मतलब है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।
1: बिल्कुल, वो भी हमको सुनना चाहते हैं।
0: तो आगे का कार्यक्रम में कौन सा माँ का संदेश, क्योंकि अभी तो संदेश तो और आए हैं, जैसे कि अभी कहा गया था कि कुछ बातें का मतलब है और कुछ मतलब की बातें, हाँ। उसके बारे में आप भी कुछ कहने वाले थे।
1: हाँ, आप इसका थोड़ा सा फुटकर यहाँ समझा दे तो।
0: मैं कैसे समझाऊं?
1: सरल भाषा में
0: कैसे फुटकरिया में?
1: हाँ,
0: जरूर फुटकरिया में। बबली जी, इस पे आप कुछ कहने वाले हैं?
2: मैं तो ये कहूँगी, कहते ना, समझ ना सीखो, समझ में भी एक समझ होती है।
1: हाँ, जो ना समझे वो भी एक समझ है।
2: हाँ, ऐसा भी हो सकता है शांता जी।
0: उसे भी कह सकता है वो नादान है कि ना।
1: हाँ, जैसे आप चाहो। हाँ,
0: बात ये हो जाता है शांता जी की, हाँ, कुछ बातें का मतलब है और हाँ, कुछ मतलब की बातें। ये बात ऐसा हो जाता कि मतलब और स्वार्थ का रिश्ते, मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। कोयला पता आपको क्या?
1: हाँ, कोयला पता है, वो काला जो हम खाना पकाते हैं लकड़ी से, तो जो उसमें निकलता, जो जलता है, वो कोयला होता है।
0: कोयला, हाँ, जला हुआ लकड़ी। कहावत है कि जब गर्म होते हैं ना,
1: हाँ जी,
0: तो छूने वाले का जला देता है।
1: हाँ,
0: कोयला जब गर्म होते हैं ना,
1: हाँ,
0: तो छूने वालों को जला देते हैं, और जब ठंडी है तो अगर आप उसे छुए तो क्या होता है?
1: दाग दे देते,
0: हाथ काला कर देते, हाँ। हैं। बस यही है छोटे रूप में। बबली जी भी कुछ कहने वाले?
2: मैं ये कहने वाली थी कि एक तो लकड़ी से कोयला होता है और एक पत्थर का कोयला होता है।
1: ये तो
2: क्योंकि पत्थर की खाने होती हैं, वहां से फिर कोयला निकलता है। कोयले की खाने होती हैं शांता जी,
1: काला पत्थर जी।
2: हाँ,
1: फिल्म जैसा है।
2: सही बताया,
1: हाँ,
2: आपने,
1: काला पत्थर अमिताभ बच्चन जी के।
2: हाँ हाँ, वो कोयला निकालते हैं, तो हाँ,
1: कोयले की खान मेन।
0: वो कैसे प्रयोग किया जाता है और आपको पता है कैसे प्रयोग?
2: हाँ
0: होता
2: जी,
0: था?
2: हमारी मम्मी करते थे, हम देखते थे बचपन में। भारत में एक अंगीठी होती थी, अंगीठी को गर्म करके उसमें कोयला डालते थे।
0: अंगीठी बोले तो?
2: अंगीठी जैसे आप कहते हो ओवन, आजकल इलेक्ट्रिक है तो
1: जी,
2: और तब ऐसे मिट्टी से बनते थे।
1: हाँ,
2: तो छोटी को अंगीठी कहते थे, बड़े को तंदूर कहते हैं।
1: अच्छा,
2: उसमें रोटी सेकते हैं।
1: हाँ, जो जैसे प्लग कर देते हैं।
2: हाँ हाँ, हाँ। सही आपने समझा शांता जी। तो हमारी मम्मी अंगीठी में कोयला डाल के,
1: हाँ,
2: तो उसमें अरे तेल डालते थे, आप तीता तेल कहते हो, हाँ, और भारत में उसे
1: मिट्टी का तेल कहते हैं।
2: तो मिट्टी का तेल डाल के उससे पहले धुआं निकलता है बहुत कोयले का,
1: हाँ,
2: और धुआं निकलने के बाद,
1: हाँ,
2: फिर वो जलता है, फिर उस पर खाना पकाते थे हमारी मम्मी।
1: ऐसा?
2: हाँ जी।
1: तो अगर आप नाराज ही ना माने तो हम ये कहें कि इसलिए भारत के घर जो है ऐसे गांव में, ये कोयले की वजह से काला है। कोई घर है ऐसा?
2: हाँ, हो भी सकता, हाँ, है, लेकिन नहीं अंगीठी को, लेकिन घर में नहीं, जब उसका धुआं छोड़ती है तो बाहर रखते हैं।
1: ऐसा?
2: जब उसका धुआं एकदम निकल जाता,
1: हाँ,
2: है,
1: हाँ,
2: और कोयला सुलग जाता है, फिर उसको घर के अंदर लेके आते हैं।
1: अच्छा, तो उस पर खाना पकाते हैं।
2: हाँ जी,
1: तो उसका स्वाद कुछ अलग सा होगा।
2: हाँ, वो तो है, वो तो है। पहले पहले तो चूल्हे पे खाना बनता था,
1: हाँ,
2: अंगीठी पे बनता था, और फिर स्टोव आया, स्टोव पे बनता था, फिर जाके गैस आई है।
1: हाँ, कितना परिवर्तन ना, जैसे परिवर्तन होता जाता है, होता हो रहा है ना, वैसे वैसे हमारे शरीर पे भी हानि बढ़ रहे।
2: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: शरीर पे जरूर हानि, जरूर,
1: हाँ,
0: कुछ ना कुछ होता होगा।
1: वैसे हम लोग पहले एकदम नतीर खबर एक रहा ना, तो उस पे शरीर पे हानि उतना ना रहा,
0: ऐसा है ना।
1: हाँ,
0: पर शांता जी,
1: हाँ जी,
0: इसी कारण नवरात्रि होता है हम सबको, और हम अपने शरीर के इस समय पे थोड़ा से और
1: पवित्र
0: करते हैं, यानी कि कोई प्रकार से कहा जाता है कि व्रत आदि रखते हैं शरीर में थोड़ा सा, और
1: ऊर्जा होते हैं,
0: हाँ, तनी से, और उसमें कुछ और हम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि भाई नीमक नहीं खा रहा हूँ, और निमकवा कमती हुई के शरीर में, तनी एकदम टूटा भाषा में कह रहा हूँ कि तब मुंह से तनी गुस्सा वाला बात निकलने लगता है, तो ये तो भी नहीं होना चाहिए।
1: कंट्रोल करना चाहिए,
0: कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कहावत है दोस्तों कि वाणी को वीणा बनाइए। वीणा बनाना, वीणा क्या चीज है अभी हम जरूर आपको बताएंगे, और ये भी आप जानते हैं पर ये संदेश भी अंदर आया है, वाणी को वीणा बनाइए वान ना बनाइए,
1: बान ना बनाइए।
0: हाँ, यानी कि जैसे कि कहावत है कि वाणी को बान मत बनाइए
1: जी,
0: क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा सारे गामा पा।
1: हाँ, वीणा जैसे आपको बता दे सरल रूप में, तो अगर आप सरस्वती माँ को देखोगे तो वो वीणा लेकर बैठे है ना बबले।
2: हाँ जी, हाँ जी, उसी को वीणा कहते हैं।
1: और जो आपने कहा बान, तो आप राम जी को देख ले।
0: हाँ, और यहाँ वर्णन किया गया है कि अगर वाणी से जब बान बनेगा, क्योंकि कोई सोचते
1: कड़वा शब्द,
0: कड़वा शब्द, तो बान बनेगा तो जीवन में आ जाता है महाभारत तूफान आने वाला। तो आप बस वही करो जिसे आपके कोई प्रकार के हानि ना होए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं जैसे देख रहा हूँ कि बबली जी भी घड़ी का और इतना
1: नहीं, नहीं, बबली जी कुछ कहना चाहती है।
0: ओ, तो हमें रुकना
1: इशारा,
0: चाहिए,
1: इशारा समझना करती है,
0: इशारा हो गया। तो दोस्तों बबली जी
1: इशारों इशारों से कुछ कह रही थी
2: ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बांस का तीर बना के दिल को घायल करता है, और कोई बांस की बांसुरी बना के मधुर संगीत बजाता है।
1: हाँ, अब इसमें आ जाते हैं ना, आप कैसे अपने वस्तु को यहाँ पे अपने जुबान को प्रयोग करते हैं,
2: किस ढंग से उपयोग करते हो।
1: हाँ,
2: हाँ जी, सही बात शांता जी
1: जी, जो वो कहते हैं कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो,
2: तोलो सोचो फिर बोलो,
1: फिर बोलो।
2: हाँ जी,
1: तोल के और सोच के फिर बोलना, क्योंकि एक बार जो शब्द निकल जाता है तो उसको आप वापस नहीं कर सकते।
0: आगे का कार्यक्रम।
2: हाँ जी, सातवां दिवस माँ काल रात्रि जी का है। इस दिन माँ की पूजा होती है और माता के भक्त नीले वस्त्र पहनकर देवी को गुड़ का भोग लगाते हैं।
0: नीले कौन सा रंग होता है?
2: ब्लू,
0: ब्लू।
2: हाँ जी,
0: ब्लू,
2: ब्लू। हाँ जी, और सुना जाता है कि इस दिन गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति को शोक की मुक्ति मिलती है।
0: तो इसे यहाँ पर आपने सातवां रात्रि यानी कि इस माँ के सईफंद आफंत के अंतर्गत काल रात्रि माता के अंतर्गत ना?
2: हाँ जी,
0: जो संदेश सुनाए, और हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: शांता जी, जैसे कि कार्यक्रम नवरात्रि के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो आपका और संदेश क्या है, और बबली जी जो तैयार हो चुके हैं अपना संदेश देने के लिए, तो पहले आप सुनाइए तो फिर हम सब बबली जी की ओर
1: बढ़ें। हाँ जी, तो यहाँ हमने पा गई है, और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि यकीन और प्रार्थना यानी कि दुआ, यकीन और प्रार्थना नज़र नहीं आते हैं मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। सुनने वालों, तो यहाँ से सातवीं दिन कालरात्रि की थी और है। कालरात्रि स्तात ओक वेल बकेंत आस माँ काली एंड इज द सेफ एंड द खदांत फन माँ दुर्गा। कालरात्रि इज फनितखर फन द दोत एंड ने खतीफ एनर्शियन दोर हार्त अनबेदन वर्ड एंड द क्वाद एनर्जी Energieën zowel innerlijk als uitwendig verdreven. Men zal nooit enige vorm van angst of vrees ervaren. Kalratri staat ook wel bekend als Devi Shubhamkari, Shubhamkari, skengster van goede daden. Zij beloont bhakt door de zorgen uit hun leven weg te nemen. Te je Kalratri ki.
0: अष्टमी माता के अंतर्गत क्या संदेश है आपके?
1: अच्छा, हाँ हाँ, अष्टमी माता के है तो वो है महागौरी। महागौरी यानी कि, अच्छा बता दे, महागौरी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दुर्गा माता इन हर अक्ष्त फॉर्म। सै वर्ड अनबेदन ऑफ द अक्ष्त द फन नवरातम बेहतर बकें अस अष्टमी। Mahagauri staat symbool voor puurheid en rust. Door haar te aanbidden, verdwijnen al het leed en de zonden van het huidige en de vorige levens. Ja, wat hè? Er wordt ook aangenomen dat Mahagauri de 16-jarige ongehuwde vorm van Devi Parvati is. Toen aapko sunaya gaya sunne walo Mahagauri गौरी के बारे में ये छोटा सा संदेश।
0: बबली जी, इस पे आपका क्या संदेश है? क्योंकि ये एक दिन अष्टमी जब नवरात्रि के आ जाता है ना, तो हम सब यहाँ पे तैयारियाँ भी करते हैं, और ख़ास करके अष्टमी के व्रत आदि, कितने लोग जो अष्टमी का पूजन करके और व्रत को तोड़ते हैं, उस अंतर्गत में भी कुछ संदेश देना। इस दिन के महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है, क्योंकि दित इस एन फन द बलंगराइक आलस इस बलंगराइक ऐतरात पर अष्टमी के दिन खास करके और
1: महागौरी के दिन,
0: महागौरी के दिन खास करके कुछ और कार्य किया जाता, तो बबली जी इस पे और हम सबको संदेश।
2: हाँ जी, अष्टमी के दिन महागौरी जी माँ की पूजा होती है। सुबह सुबह स्नान करके माता रानी का पाठ करना चाहिए, और सूर्य निकलने से पहले उठना शुभ माना जाता है। इस दिन गलती से भी देरी तक नहीं सोते रहना चाहिए। अगर व्रत रखा है तो स्नान करके पूजा करके साफ कपड़े पहनने चाहिए, और माँ दुर्गा की पूजा का सुबह का समय अच्छा माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। अष्टमी के दिन हवन बिना पूजा करने की गलती नहीं करनी चाहिए, हवन जरूर करना चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। और हवन करते वक्त आहुति की सामग्री कुंड से बाहर ना जाए, हवन कुंड के अंदर ही रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हवन कुंड के अंदर रहना चाहिए। और
1: आप ये जरूरी नहीं, आप इस प्रश्न पर आंतवर दे पर पूछना जरूर चाहती हूँ, ऐसा क्यों कि हवन के बाहर सामग्री नहीं चाहिए? हमके थोड़ा से मालूम है, कभी सत्संग की तो उसमें हमने जानकारी की है, पाई है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको भी सब खा लेना चाहिए ना, ऐसे ही हवन है। अगर हवन कुंड से बाहर कोई जो सामग्री गिर जाता है तो जो देमौन है वो लेता है
0: ऐसा,
1: तो साथ ही साथ आप उनको भी भोग लगाते हैं। जो अंदर रहता है वो भगवान को मिलता है, जो आप जिसका आप आराधना करते हैं उसको मिलता है, जो बाहर जाता है तो वो मिल जाता है।
0: दोस्तों देखिए, सत्संग का और महिमा, और शांता जी जो सत्संग किए हैं।

0: और ऐसा संदेश हम सबको।
1: अगर हम भी पूजा घर पे करते हैं तो पंडित जी भी इस पे गौर देते हैं कि ऐसा जो हवन कर तो उसमें सिर्फ बाहरे ना गिरे पाए,
0: बाहरे ना गिरे पाए।
1: हाँ, तो ये इसका जो महत्व है,
0: महत्व है।
1: हाँ,
0: और देखा जाए तो शांता जी नेखंद माँ के नेखंद जल्दी चलाना चाहिए क्योंकि हम लोग समय ज्यादा लेते हैं।
1: सिद्धि धात्री है नवी माता की नाम द नेखंद फोरम फन दुर्गा माता वर्थ अन खबेदन ऑफ द नेखंद दा महानवमी। हाँ जी, हैत आन बेदन फन सिद्धि धात्री लय तोत हैत फरखरोतन फन कैनस एन हैत अफनेमन फन लयदन Doordat zij alle vorm van kracht en verlossing geeft, wordt zij Siddhidhatri genoemd. Zij bezit de kracht om verschillende wensen te vervullen. Door haar zegen en genade krijgt men niet alleen wereldse, maar ook hemelse plezier, innerlijke vrede en gelukzaligheid. क्या बात है। तो ये सब है, अगर आप नवरात्र में अपना कुछ कार्य करते हो, नियम से करते हो, तो इसमें आप जरूर से परिवर्तन पाओगे। ये आप पर निर्भर है आप कैसे करते हो।
0: तो शांता जी, हम जरूर इस पे भी कुछ कहना चाहूँगा।
1: जरूर से
0: दोस्तों, ये है आज के कार्यक्रम, आज का विषय जो रखा गया नवरात्रि। तो नवरात्रि से तप व्रत आदि करने से और हम सबके अपना शरीर, जैसे कि यहाँ संदेश में भेजा गया है, एक पके हुए फल के तीन पहचान होती है और उस तरह बन जाना चाहिए। पके हुए फल का तीन पहचान होते हैं, हम जब उसे बन जाए तो हमारा बस मंगलमय। कहा जाता है कि एक तो वो नरम हो जाता है, पके हुए फल जो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रसीला नहीं, यहाँ नहीं लिखा हो।
1: अच्छा अच्छा,
0: आपने चला दिया रसीले। जरूर पका हुआ नरम होने से तो रसीले हो जाएंगे, पर कहने के तात्पर्य ये कि उसका रंग बदल जाता है। रंग बदल जाता है, और इस तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति जो ऐसे नवरात्रि कार्य में भाग लेते हैं, नवरात्रि का और सब प्रकार से मन तन से और कार्य करते हैं, तो उसकी ये कहावत है कि वो तीन पहचान उसमें हो ही जाते हैं। पहले कि उसमें नर्मता हो जाता है, जो किसी से बात करे तो नरम भाव से सरलता से। दूसरा, उसके वाणी में मिठास हो जाता है, और तीसरा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग हो जाता है। आत्मविश्वास कहते हैं सेल्फ ट्रोवन के। तो ऐसा नवरात्रि करने से जिसके पास ये रूप रंग देखेंगे आप, तो जान ले बस माँ का कृपा, माँ का दया, माँ का रक्षा उस पे जरूर हुआ होगा। बबली जी, आप नवमी दिन के अंतर्गत और आप कुछ और संदेश सुनाने वाले हैं।
2: हाँ जी, जरूर। माँ दुर्गा का नौवां रूप है माँ सिद्धिदात्री माँ। यह समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली माँ है। यह कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद है। कहा जाता है कि शक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता, मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के दिनों का फल प्राप्त हो जाता है।
1: नवरात्रि के नौ दिन के प्राप्त हो जाती है। हमारे बबली जी के आवाज़ में आप सुने वालों,

ना सुनने वालों, धुन तो आपको पता हो गई है। तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम का खत्म होने को आ गई है या हो गई है, होने को आ गई है। तो मैं कहूंगी जय माता जी करते जाओ शाम सवेरे। माता आपने मिटा दी मेरे जीवन के सभी अंधेरे। ये जो प्रोग्राम आप तक पहुँचाया गया, सजाया गया, बनाया गया, हमारे साथ में जो हमारे साथी है बबली जी और संजय जी, यहाँ से हम मिलजुल कर जो बनाए आपने साथ दी, तो यहाँ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और स्वीकार कीजिए शांता जी के प्यार भरी राम राम प्रणाम।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। यहाँ तलक कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश हम सब आपके लिए प्रस्तुत किए। आशा यही है कि कुछ ना कुछ संदेश जरूर आपको अच्छा लगा होगा और अब आपके पास पहुँचे होंगे। और अगले सप्ताह तक फिर मिलेंगे। सभी को हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है। हमारे साथी जो शांता खिमाए बबली आसरा जी जो इस कार्यक्रम में सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका सेवक संजय। सभी को नमस्कार।

लता जी के आवाज़ में और साथ दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी। ये सुंदर सा गीत ज़रा सामने आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। कन कन में है भगवान, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम कन कन में भगवान और टाइटल सॉन्ग आपको सुना दिए महेंद्र कपूर जी ने कि कन कन में भगवान।

उसी फिल्म से ये भी हम आपके लिए भी प्रस्तुत कर रहे हैं। जरूर से आप सुने और सुने इसका शब्द जो है इसे समझें।

कितने चुन चुन कर ये शब्द जोड़ जोड़ के इसका गीत बनाया गया है। और सच में मेरे सुनने वालों, अगर आप गौर से इस गीत को सुने जो हमने आपके लिए प्रस्तुत की है, तो आप भी सोच में ही रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे कि कितना कितना कितना चमत्कारी से ये संसार रचा गया है, कैसे आप और हम भी रचे गए हैं, बनाए गए हैं। इस पे आप सोचोगे, समझोगे, बुनोगे तो आप अपने आप को बहुत ही बहुत महान समझोगे। Üben unik, wij zijn allemaal uniek. Niet alleen de mens, maar alles en alles, alles is zo uniek. बनाने वाले का हम क्या तारीफ करें जिसे हम देखे नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं। और सोचो तो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन हैं। सुंदर सा गणेश मंत्र, आप सभी को नवरात्रम के हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया।

जय जय माँ, जय जय माँ जगजीत सिंह जी की आवाज़ में सुंदर सा माता भजन आपके लिए पेश किया गया। दुर्गा माता इन द खस्क्रिफ्टन हेत हिंदुइज्म एरकेन दा द फ्रोलके खोदलके एनर्जी net zo belangrijk is als de mannelijke goddelijke energie. In de teksten uit de Rigveda wordt Devi godin omschreven als

एक भक्त की माँ से प्रार्थना। जगदम्बे पहाड़ा वाली माँ, सोनू निगम जी की आवाज़ में यहाँ से हमने और सुने हैं। ये सुंदर सा माता भजन आपके लिए पेश किया गया है। माता रानी की आशीर्वाद, माता रानी की आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ बने रहे। माता रानी की आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बने रहे। हमको था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई है।

सजा हर सजा है दरबार माँ ज्योति जगदम्बा की, सजा है दरबार माता जोगी जगदम्बा की। नवरात्रि का त्यौहार है, नवरात्रि का त्यौहार है, वो देखो मंदिर में मेरी माता मुस्कुराई है। जय माता दुर्गे की।

हाँ, माता ने पानी में ज्योति जलाई है, आपे ज्वाला माई रे। दुर्गा इस अंतामस फॉरम फॉर पार्वती ऑफ आदिशक्ति हर नाम बतेकंत ऑन ओफर वेनलक से दी मुइलक बना दरबार इस ऑन तुखंकलक पार्वती वर्त ओक अम्बा मुदर खनुम ऑफ अन्नापूर्णा वी वास दुर्गा माता। दुर्गा माता वर्त खसीन अस अन मुदर फिगूर एन फक अफगेबिल्ड अस अन मोये फ्रौ रेडेंद ऑफ अन लेव ऑफ टाइगर मेट वेले आर्मन दी एलक अन वापन द्रागन एन फक डेमोनन फर्स्लान। एन वट वर्तेगेंवोर्डिग मा दुर्गा। द गोदिन दुर्गा वर्त गेसीन अस अन टेकन फन मख्त एन बस्केर्मिंग एन दारोम हेफ्ट से दोर द यारन हेल सोफिल फॉलगर्स गेक्रेगन। से वास ओर्स्प्रोंकलिक गेइंकारनेर्ड ओम टेगेन अन डेमोन ते वेख्टेन टेगेन द डेमोनेन ते वेख्टेन दी अलेन अन फ्रौ कोन फर्स्लान दी अलेन एन फ्रौ कोन फर्स्लान। नु वर्ड से गेसीन अस अन वूस्ते क्रेगर्स गोदिन। Het woord Durga betekent letterlijk ondoordringbaar, onoverwinnelijk, onaantastbaar.

उठो फिर से हौला हौले से मुस्कुराते हैं, धीरे से मुस्कुराते हैं, माता शेरवाली की भक्ति में मन को लगाते हैं। बड़ा बरकत है माता रानी की भक्ति में, जब से की है कोई दुख दर्द ही नहीं होता है। सुनो, ये बादल जब भी बरसता है मन माता रानी को दर्शन को तरसता है।

नेहरावाली, जगदम्बे, लखवीर, लखवीर सिंह लखा जी की आवाज में यहां से हमने सुने। इस दुर्गा माँ द मुदर फान शिवा दुर्गा स्तात बकेंत ऑस द क्रैखर होदिन स्तात बकेंत ऑस क्रैखर होदिन हर बलांगरेक्स्ट रोल इन द हिंदुविस्तिस मेथियोलोजी इस हेत बस्केर्मन फान द मेंस हेत तेगन हेत क्वाद। एम बोफदीन is zij, Durga Mata, de belangrijkste gemalin van Shiva. Parvati heeft talloze namen. Ja, Parvati ji ke aise anya naam hai, 108 naam aise hai. Godin Durga is an incarnatie van Godin Parvati. Ze nam de avatar van Devi Durga om Mahishasur te vernietigen. De 9 vormen van Ma Durga wordt aanbeden met 9 verschillende prasad of bhog. De 3 eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva kwam samen om een krachtige vrouwelijke vorm met 10 armen te creëren. Hoe is Durga Ma ontstaan? En die is wat ik net zei, de 3 eenheid van Brahma, Vishnu en Shivji kwamen samen om een krachtige vrouwelijke vorm met 10 armen te creëren. Toen Durga als geest uit de wateren van de heilige Ganga's tevoorschijn kwam, kreeg ze van alle goden samen een fysiek vorm. आगे जानने के लिए सुनने वालों आप जरूर से दुर्गा सप्तशती पढ़े या मंदिरों में जाए और उनका कथन भी सुने। मन उदास हो तो एक काम किया करो। मन उदास हो तो एक काम किया करो। जय माता दी नाम ले लिया करो। जन्म से अब तक माता रानी और मेरी माँ बाप की आशीर्वाद ही है जो आज भी मेरे साथ है। नींद आए तो सो जाया करो, ना आए तो माता रानी की भक्ति में खो जाया करो। रिद्धि दे सिद्धि दे वंश में वृद्धि दे हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा के संपूर्ण कर

0: हर साल नवरात्रि माथे के लखविंदर सिंह लखा जी के जी ने सुना दी और नौ दिन की इसमें कथा भी सुना दी है कि कौन कौन दिन कौन माता का दिन है। चरणों में धन, घरों में धन की बरसात हो और चरणों में माँ की ध्यान हो, घरों में धन की बरसात हो, माता रानी की आशीर्वाद हो, जय माता दी। हे माता रानी, वो एक आपका नाम है, वो एक आपका नाम है जो बनाता मेरा बिगड़ा काम है। सुबह सुबह ले माता रानी का नाम, सुबह सुबह ले माता रानी का नाम, सिद्ध होगा तुम्हारा सब काम। कभी सुबह तो कभी शाम याद आती है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आती है, माता रानी तेरा दर्शन की याद आती है।
1: जय माता दी।

इतनी सुंदर से फरमा दी है शेखर जशवाल कि मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में, ना सिर्फ नवरात्रों में पर हमेशा माता हमारे साथ ही रहे। आज माता रानी की बात होने दो, आज माता रानी की बात होने दो, मुझे माता रानी की भक्ति में खो जाने दो। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, माता रानी के भक्ति से नाता जोड़ो। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो, माता रानी की भक्ति से नाता जोड़ो। मिल गई जिंदगी हसीन, मिल गई जिंदगी हसीन, जब मैं हुए माता रानी की भक्ति में लीन।

मेरे घर आओ माँ शेरावाली एक बार फिर हमको सुना दी शेखर जसवाल जी की आवाज़ में। जहाँ प्रेम वहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम वहाँ भक्ति, जहाँ शिवा जहाँ शिव वहाँ आदि शक्ति है। पार्वती जी संग शिव को पूजिए, त्याग कपट अभिमान। खुशियाँ सभी जगत की मिलती, छूटे माया जाल, पार्वती पते हर हर महादेव।

और कौन आए हैं तो नवरात्रि की, नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये नवरात्रि माता का गीत हम आपको, भजन आपको हम सुनाते हैं। चलो एक और सुना जाए।

और बोलते चलो, और बोलते चलो शेरावाली की, और बोलते चलो हम चलते हैं शेरावाली के आरती की ओर दोस्तों, और आपको नवरात्रि का सॉन्ग हम सुनाएंगे। अब चलो आरती की ओर, नवरात्रि की माताजी के आरती की ओर।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

इंसान उस कल की चिंता में डूबा रहता है जिस कल का कोई भरोसा ही नहीं है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी सेविका बबली आसरा। आज फिर मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है बॉलीवुड। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी बॉलीवुड इतनी बड़ी है कि इसमें इतने महान कलाकार हुए हैं हमारे फिल्मी सितारे। और आज मैं जिस फिल्मी सितारे के बारे में बताऊंगी उसने तो बहुत ऊंचाइयों को छुआ, और वो है हमारे सबके प्रिय मनोज कुमार जी।

सुनने वालों, आज मैं आपको मनोज कुमार जी की फिल्मों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके निर्देशक के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगी।

मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार जी का जीवन। उनका पूरा नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 इबटाबाद, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। विभाजन और स्थापन। भारत के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार शरणार्थी के रूप में दिल्ली आ गया था। उनकी शिक्षा दिल्ली के हिंदू कॉलेज से बीए की डिग्री करके प्राप्त की।

सुनने वालों, अब हम मनोज कुमार जी की मशहूर फिल्म क्रांति का एक गीत सुनने जा रहे हैं, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म क्रांति का था और ये मनोज कुमार जी की बहुत सफल फिल्म रही और इसमें दिग्गज अभिनेताओं ने काम किया जैसे दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, निरूपा राय, परवीन बॉबी और हेमा मालिनी और स्वयं मनोज कुमार जी ने भी इसमें अभिनय किया था।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के जीवन के बारे में बता रही थी। अब उनके परिवार के बारे में सुनिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी जिनका नाम शशि गोस्वामी है और उनके दो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों में अभिनय किया है और विशाल गोस्वामी ने निर्माण तथा संगीत विभाग में काम किया है। सुनने वालों,

और मनोज कुमार जी के एक भाई राजीव गोस्वामी थे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उनके एक छोटे भाई कुकू का दंगे और बीमारी के दौरान बचपन में ही निधन हो गया था। सुनने वालों,

मनोज कुमार जी ने निर्देशक भी किया, निर्माता निर्देशक भी रहे। उनकी फिल्मों में उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम थे। उपकार 1967 यह एक ब्लॉकबस्टर और देशभक्ति से भरपूर फिल्म थी जिसका निर्देशन खुद मनोज कुमार जी ने किया था। इसमें उन्होंने भारत नाम के किसान और सैनिक की भूमिका निभाई थी। क्रांति 1981 यह एक ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया गया था, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार समेत कई बड़े कलाकारों ने काम किया था। रोटी कपड़ा और मकान 1974 यह फिल्म समाज की आर्थिक समस्याओं और बेरोजगारी पर आधारित थी। यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। पूरब और पश्चिम यह 1970 में आई। इस फिल्म में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। सुनने वालों अब हम गाने की ओर बढ़ते हैं। अब गाना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लिया गया है।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से था, ये भी मनोज कुमार जी की एक बहुत अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म में अभिनय किया था शशि कपूर, जीनत अमान, खुद मनोज कुमार जी ने।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने कुल 55 फिल्मों में काम किया और मनोज कुमार जी की पहली फिल्म 1967 में आई जिसका नाम था फैशन। इस फिल्म में उन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग भिखारी का छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता कई फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक महान पहचान बनाई।

सुनने वालों, मनोज कुमार की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म मैदानी जंग 1985 में आई थी, जबकि बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म जय हिंद 1999 में आई थी। सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना, ये फिल्म पूर्व और पश्चिम से था। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी सुनने वालों। इसमें भारतीय सांस्कृतिक और पश्चिम सांस्कृतिक का मेल जोल था कि इसमें मनोज कुमार जी ने दिखाया कि भारतीय सभ्यता कैसी होती है और पश्चिम की सभ्यता कैसे होती है, पूर्व और पश्चिम। और इसमें अभिनय किया था स्वयं मनोज कुमार जी ने, सायरा बानो जी ने और कामनी कौशल जी ने। हर फिल्म में उनकी प्रिय माँ होती थी कामनी कौशल जी, वो उनको इतना पसंद करते थे कि हर फिल्म में उन्होंने कामनी कौशल जी को अपनी माँ बनाया।

सुनने वालों, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। ऐसे मनोज कुमार जी को भी बहुत चीज़ें पसंद थी, जैसे वो अपनी फिल्मों में आईने का इस्तेमाल करते थे, उनकी फिल्मों में शीशे बहुत रहते थे, शीशे रहते थे, और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ जरूर रखते थे, वो भी उनका एक स्टाइल था, एक उनकी हर फिल्म में मुंह के ऊपर हाथ रहता था।

और उन्होंने अपनी फिल्म में भारतीय सभ्यता को बहुत उजागर किया, दुनिया को दिखाया कि भारतीय कैसा देश है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसके रहने वाले कैसे हैं। वहाँ पर जहाँ तक किसानों का देश है भारत, वहाँ पर किसान कैसे काम करते हैं, और ये चीज़ें उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत दिखाई और देशभक्ति का बहुत उपयोग किया, क्योंकि वो देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी देशभक्ति को बहुत दिखाया फिल्मों में सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। मैं आप सबको बता रही थी मनोज कुमार की जीवनी के बारे में। मनोज कुमार जी के पास कुल कितनी संपत्ति थी? विकिपीडिया के अनुसार उनके पास करीब कुल संपत्ति $20 मिलियन, करीब 170 करोड़ रुपए नापी जाती है। सुनने वालों, संपत्ति से जुड़ी मुख्य बातें। कुल नेटवर्क उनकी संपत्ति 170 करोड़ है। कमाई का स्रोत, फिल्मों में 50 साल का लंबा और सफल कैरियर बतौर अभिनेता, निर्देशक और लेखक है। प्रमुख संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम पर गोस्वामी टावर नामक एक बड़ी इमारत भी है। आधिकारिक डेटा, हालांकि उनकी संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक और पक्का सार्वजनिक डेटा मौजूद नहीं है और यह आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स व सेलिब्रिटी नेटवर्क वेबसाइट पर आधारित हैं। सुनने वालों,

सुनने वालों, ये भी मनोज कुमार जी की एक बेहतरीन फिल्म थी। उनकी हर फिल्म में देशभक्ति का गीत जरूर होता था और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो टीवी पर उनकी फिल्में जरूर दिखाई जाती हैं सुनने वालों। और जब तक उनकी फिल्म ना दिखाई जाए तब तक समझो कि टीवी वालों का दिन अधूरा है सुनने वालों।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें प्रमुख हैं घर बसा के देखो, गृहस्थी, हरियाली और रास्ता, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद, पूर्व और पश्चिम, वो कौन थी, शोर, गुमनाम, हिमालय की गोद में, शहीद, उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

पत्थर के सनम, पूर्व और पश्चिम दो बदन, क्रांति, सन्यासी, ये भी उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

0: सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हेलो एचआर, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग,
1: मीट मिस्टर भारत।
2: हेलो,
1: इलाहाबाद से आए।
2: इलाहाबाद?
3: आप कहां के रहने वाले?
2: लंदन का। मैं इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता।
1: भारत, मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस में तुम्हारे नाम का खत आया था।
4: गंगा भाभी का
3: गुरुजी का
4: क्या लिखा?
3: आप सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।
1: ओम जब मिस्टर बनारस से पढ़ता था, उसे भी इलाहाबाद से गुरुजी के खत आया करते।
3: आप गुरुजी से कभी नहीं मिले?
1: नहीं, जिंदगी में कभी इलाहाबाद जाने का मौका ही नहीं। तुम्हारे पिता ओम से संबंध था। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गोली का निशाना बना दिया। मेरे घर वाले लाहौर में थे, मुल्क के बंटवारे में सब के सब कत्ल कर दिए गए। उसके बाद कभी इंडिया जाने का ख्याल ही पैदा नहीं। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
3: अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया।
2: माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
3: जी,
2: और नहीं तो क्या। यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है, ना रोटी की फिक्र, ना कपड़े का गम, और ना घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
3: वो देश आपका भी तो है।
2: काली मत दो
3: जी।
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो, वो देश मेरा नहीं।
3: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भरा अनाज नहीं निकाल सके, और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
3: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो।

जीरो दिया मेरे भारत ने, मैं भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ। सुनने वालों, मैं भी भारत की रहने वाली हूँ, इसलिए भारत की बात सुनाती हूँ। पहले लोग सोचते थे कि भारत में कुछ नहीं है।

नहीं बार सुने, मन करता है सुनती जाए सुनती जाए। और ना सिर्फ गाने, और जो गाने वाले भी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है सुनने वालों। इस गाने को गाया महेंद्र कपूर जी ने, और ये फिल्म थी पूरब और पश्चिम।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के बारे में बता रही थी। मनोज कुमार जी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म श्री जो 1992 में उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया और राजकीय सम्मान दिया गया, सुनने वालों,

मनोज कुमार जी को भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री और 2016 में श्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सुनने वालों,

मृत्यु 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल मुंबई में हुई। तब वह 87 साल के थे। सुनने वालों, अभिनेता मनोज कुमार जी ने अंतिम सांस उसी हॉस्पिटल में ली। सुनने वालों,

सुनने वालों, अब मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और अगली बार फिर किसी दूसरे फिल्म स्टार, एक्टर, हीरो या हीरोइन के बारे में आपको उनके जीवन के बारे में जरूर बताने की कोशिश करूँगी। सुनने वालों,

शब्दों को संभाल कर बोलें, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। कड़वे वचन तीर के समान घायल करते हैं, इसलिए हमारी वाणी में हमेशा प्रेम और मिठास होनी चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन करता हूँ। और ज्योति का प्रकाश में सहयोग देने वाले हैं बबली आसरा जी, संता खेमई जी और अनुराधा चंदर जी। तो बबली जी, आप अपना एंट्री ले, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शांता जी भी तैयार हो चुके हैं।
1: गुरुमुख भले ही संसार में रहे, परंतु उसका ध्यान अपने सद्गुरु के चरणों की ओर रहता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
2: सभी श्रोतागणों को ज्योति का प्रकाश के उपलक्ष्य यहाँ पर हम सभी उपस्थित हैं। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
0: सुनने वालों, हर सप्ताह की तरह वही गीत की ओर हम सब पढ़ रहे हैं, जो राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े। तो उसी गीत के ओर हम सब बढ़ते हैं हरिओम सरन जी की आवाज़ में।

0: जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। सुनने वालों, हमारे कोलेखा साथी अनुराधा जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं एकदम भारत दिल्ली से, तो अनुराधा जी आपसे निवेदन है, आप अपना एंट्री ले और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। तो आज जो हम बात कर रहे हैं और मैं जिस संबंध में बात करना चाहूँगी वो है रिश्ते। और रिश्ते तो हम बहुत लोगों से निभाते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़रूरी रिश्ता होता है वो है एक बच्चे का और उसके माँ बाप के साथ जो रिश्ता। तो बच्चे और माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो अटूट होता है, और ये रिश्ता तो जन्म जन्मांतों का रिश्ता होता है और प्यार भरा रिश्ता होता है। और हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और वो भी अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे भी बड़े होकर अपने माँ बाप को उतना ही प्यार दें, उतनी ही इज्जत दें, और वो हमेशा जो रिश्ता है वो हमेशा अटूट बना रहे। परंतु क्या होता है कि ये जो रिश्ता होता है, जब तक कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ वो बड़ा उनको करते हैं, तो वो तो बहुत कुछ वो अपना सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ अपना वो उनका मन करता है कि करें, पर बच्चों के लिए वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं और उनके जीवन के बारे में, आने वाले जीवन के बारे में सोचते हैं। और उनका बच्चों का जो जीवन है उसी के अच्छा जीवन की वो प्रार्थना करते हैं, और बहुत बार कष्ट सह कर बच्चों को बड़ा करते हैं। और क्या होता है कि बच्चे तो बड़े हो जाते हैं और सभी ने बड़ा होना है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर जो माँ बाप ने जिन्होंने कष्ट सह कर अब उनको बड़ा करा, उन्होंने दो कम खाना खाया हो या कम पैसे में अपना जीवन व्यतीत करा, पर पैसे बचाए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जिससे बच्चे पढ़े लिखें और उनका जीवन अच्छा हो। और एक दिन आता है जब वही बच्चे बड़े तो हो गए और वही माँ बाप वो बूढ़े भी हो जाते हैं, और तब आती है वही रिश्ता वही है बच्चे और माँ बाप में, पर अब हो गए हैं माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो रिश्ता भी एक अलग ही रिश्ता होता है, जहाँ आपको अपने बूढ़े माँ बाप की उनकी सेवा का आपको एक अवसर मिलता है, और वो रिश्ता एक अलग होता है जहाँ पर माँ बाप ने तो पूरा अपना सब कुछ दे दाकर बच्चों को बड़ा कर दिया, अब बच्चों की बारी आई है जो कि बड़े हो गए हैं वो कि अपने बूढ़े माँ बाप की देखरेख करें। तो ये भी एक अटूट रिश्ता होता है, और इसी बारे में मैं आगे बात करना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए संजय जी, फिर मैं इस बारे में आगे आपसे और बात करूंगी।
0: जरूर अनुराधा जी, एक गीत की ओर बढ़ेंगे, पर शांता जी जैसे कि अनुराधा जी कह रहे हैं कि रिश्ता जो हमारे होते हमारे बच्चे के साथ और उस पे थोड़ा से दृष्टि और डालते, क्या आपको इसके बारे में क्या कहना है?
2: वो तो सही कही है अनुराधा जी ने, और ये होता भी है ना, माँ बाप के और बच्चों का रिश्ता कुछ अलग होता है, अरे माँ बाप से भी एक रिश्ता होता है, पति पत्नी का भी एक रिश्ता होता है, अपना देश से भी एक रिश्ता होता है ना बबली जी?
1: सही बात शांता जी।
2: अपना घर से एक रिश्ता होता है, जिस पर बैठे हैं सोफे पे वो उससे भी एक रिश्ता होता है।
1: रिश्ता है लेकिन नाम बदल जाते हैं।
2: हाँ,
0: रिश्ता है लेकिन नाम बदल जाता है, इस पे कुछ और आप कहेंगे बबली जी? क्यों?
1: देखो ना, रिश्ता एक नाम है, माँ बाप का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, ये सब रिश्ते हैं लेकिन इनमें नाम बदल के। तो
0: सही बात, जैसे कि आप दृष्टि थोड़ा से और कर दिया। और शांता जी, इस पे आप, क्योंकि आप कह रहे थे कि हर एक चीज से एक रिश्ता बन जाता है, यहाँ तक कि हम अपने पशु पंछी के से भी रिश्ता हो जाए, है ना?
2: हाँ, इसलिए तो कितने व्यक्ति लोग तो अपने घर में जानवर, हम ऐसे कह दे कि भी पालते हैं, उनसे भी एक रिश्ता हो जाता है। और ख़ास तौर पर जैसे हम लोग का रिश्ता है ज्योति का प्रकाश से,
0: हम लोग का रिश्ता है ज्योति का प्रकाश,
2: हमारे सुनने वालों के जैसे रिश्ता है ज्योति का प्रकाश से, पर ये भी एक रिश्ता हो जाता है। और रिश्ता उर्दू में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं रिश्ता, और रिश्ते का मतलब हैगा रेलाची, रेलाची में ईमान ऑफ फॉरबेंडिंग।
0: तो शांता जी, इस पर मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं हर बार सुबह जब निकल करके और घर से जाते हूँ तो हमारे घर के पास एक प्लैंचे है ना, तो प्लैंचे पे देखा जाता है कि लोग और जो कबूतर, कबूतरों को दाना देते हैं ना, तो ऐसा हुआ कि मैं भी देखते देखते मेरा भी दिल करने लगा कि भाई मैं भी जा कर के कबूतर को और कुछ दाना दे हूँ। तो कबूतर के पास जब मैं खड़ा होकर के और दाना दे रहे हैं, तो ये प्रश्न अपने में करते कि क्या ये कबूतर, क्या ये पंछी मुझे पहचानते होंगे?
2: ये वेट मार नोइट
0: शांता जी कहते। तो दोस्तों, क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं पहले, और अनुराधा जी जो आज का विषय को छेड़ी दिए हैं, तो अभी और उसके बारे में हम सब बातचीत करेंगे।

0: गीत जो सुना गया रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा, तो अनुराधा जी आपसे निवेदन है कि आप अपना संदेश जो रखने वाले हैं आज के रिश्ता के अंतर्गत आगे ले चलिए।
1: तो हम बात कर रहे थे रिश्तों की, आपको अपने बुजुर्ग जो बूढ़े हो गए माँ बाप जो आपके पेरेंट्स हैं को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अकेलापन और उदासी महसूस होती है। क्योंकि क्या होता है कि माँ बाप तो अब बूढ़े हो चुके हैं और वे भी जीवन की जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तो उन्होंने उनमें भी एक उदासी आ जाती है, एक चिड़चिड़ापन एक स्वभाव हो जाता है, वो बुजुर्ग होके थक जाते हैं। तो उन्हीं के बच्चे जो बड़े हो गए हैं उन्हें समझना चाहिए कि वो माँ बाप के साथ हम कैसे वो रिश्ता निभाएं जिससे कि वो प्यार बना रहे। बुढ़ापा हमारे जीवन के हर इंसान के जीवन में आएगा ही आएगा, जिसमें कई लोगों को बहुत तरह की चिंताएं और गंभीर चिकित्सा परेशानियां हो सकती हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय आपको अपनी स्वतंत्रता खोने और लोगों के दूर जाने का एहसास होने लगता है। तो जो व्यक्ति माँ बाप हैं जो बूढ़े हो रहे हैं, उनके जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं उनके उनको पता है कि वो एक समय में स्वतंत्र रहते थे, अपना अलग से जीवन रहते थे, अब वह ना वो रिटायर हो चुके, वो तो रिटायर हो गए हैं, अब उन्होंने वो किसी के ऊपर निर्भर भी करते हैं, अब वो उनकी जैसे ताकत थी पहले जैसी ताकत नहीं रहे, वो जवान नहीं रहे, तो उनको हमेशा यह डर लगा रहता है कि अब उनको कौन देखेगा, क्या उनके बच्चे उनकी देखरेख करेंगे। कई बार बच्चे अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने बुजुर्ग माता पिता को समय नहीं दे पाते हैं, यह स्थिति उनके लिए अधिक ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जो बुढ़ापे में बिना अपनी पत्नी या पति के जीवन के बिना काट रहे होते हैं, क्योंकि वे एक अकेलापन महसूस करते हैं, वो जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सहा है, तो वो चाहते तो हैं कि भाई बच्चे उनके आसपास पास में रहें, पर बच्चों की भी मजबूरी है, सब काम कर रहे हैं और आप हो सकता है दूर रह रहे हो, यह स्थिति उनके लिए अधिक ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जो बुढ़ापे में बिना अपनी पत्नी या पति के जीवन के बिना काट रहे होते हैं, क्योंकि जिनके साथ पति पत्नी दोनों हैं तो उनका तो आपस में वो दुख अपना दुख सुख बांट सकते हैं, पर जो जिनके साथ उनका एक जीवन साथी नहीं है तो उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसे में उन्हें कई तरह की बीमारियां भी घेर लेती हैं। कई बुजुर्ग लोग समय के साथ धीरे धीरे बात करना बंद कर देते हैं, उनके लिए आम जीवन जीना मुश्किलों से भरा हो सकता है। अगर ऐसे में उनके बच्चे उन्हें नहीं समझते हैं तो ये स्थिति उनके माता पिता के लिए कष्टदायी हो सकती है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर ये जिद्दी व्यवहार कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में सावधान होने की जरूरत है। ऐसा किसी बीमारी या मानसिक तनाव के कारण भी हो सकता है। तो जो बच्चे हैं उन्हें समझें कि माँ बाप अगर वो उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया है या ऐसे हैं तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ से आप उन्हें भरपूर प्यार और केयर दे सकते हैं। तो याद रखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप को समझें। इस तरह में से रखे बुज़ुर्ग पेरेंट्स का आप ध्यान दें, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आगे आप सबको बताना चाहूँगी कि हम अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को हम क्या क्या करें, क्या हम ऐसे रिश्ता कैसा निभा सकते हैं जिससे कि वो भी, उन्हें भी लगे कि उन्हें कोई प्यार करता है, उनका ध्यान रखता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी इसको आगे पढ़ने से पहले, क्यों ना संजय जी एक गीत हो जाए।
0: जरूर, जा करके हम एक गीत के जो चुन करके रख चुके हैं अनुराधा जी, पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें अपना बुज़ुर्ग यानी कि ओन्स ऑर्डर्स उन लोग के भी ध्यान देना चाहिए, तो बबली जी आपके इसके बारे में क्या ख्याल है?
2: मेरा तो यही ख्याल है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें, उनका ध्यान रखें, और वो बात ज़्यादा अच्छी है। लेकिन आजकल क्या है कि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और विदेश जाते हैं या अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो एक कमरा किराए पे ले लेते हैं, वहाँ पढ़ते हैं और माँ बाप पीछे अकेले रह जाते हैं।
0: पर ऐसा ज़्यादा तादाद में भी भारत से भी लोग हॉलैंड आते हैं, पर दुनिया के कितने देशों में जा कर के और पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तो जाना पड़ता है ना।
2: हाँ, नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, वो तो है।

0: सुनने वालों, कहते हैं कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उनके उड़ने की कला सिखाते हैं। तो जैसे पंछी अपना बच्चों के भविष्य के लिए घर आदि नहीं बनाए, उनके लिए घोंसला नहीं बनाते, इसी प्रकार से प्रकृति में हम लोग के जीवन में भी ऐसा है कि नहीं है बबली जी?
1: ना, इंसानों में तो माँ बाप तो पहले सोचते कि बच्चों के लिए घर बनाए, पंछी तो खाली उड़ने की कला सिखाते हैं उनको, लेकिन बच्चे माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के एक समझदार इंसान बना के और शादी वगैरह करके तो सोचते हैं कि अब हमारे बच्चों के लिए घर भी बना दें कि घर में रहे आराम से,
0: ऐसा सोचते हैं। पर देखो, इंडिया का सोच और सूरीनाम का सोच और हॉलैंड का सोच सब अलग अलग है, शांता जी, है कि ना?
2: बात तो सही है, बात सही है। अब देखो ना, पहले जब बहुत सारे यहाँ पे विदेशी लोग नहीं रहते थे यहाँ हॉलैंड पे, तो जैसे हमने सुना तो 18 साल के जो बच्चा होता था घर में, तो उसको अपने आप में निपर्सोन मुजदान से अलस्तान दिखा वो ना वन आखती यार से दया अल्फल वसन यह तो संजय
0: जी जी जी
2: हाँ दया अल्फल वसन दम उचो यह एक दोपियस खान दोप जैसे सब बोले दया फ्रांतवोड दम उचो अल सेल्फ खान दून मैं धीरे धीरे यहाँ गोरा लोग देख रहे हैं कैसे हम सब अपने बच्चों से व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको भी मन भी पलट गए हैं, अपने अपने बच्चों की ओर वो सब भी नम्रता रखे है, प्यार भी रखे है, इसे बनाए रखे हैगा। पर ये ठीक है, जब तक हम लोग सोर्वू करेंगे अपने बच्चों तो वो भी सेल्फ स्टैंडक नहीं होगा। सेल्फ स्टैंडक होना चाहिए अपने जीवन पे आगे बढ़ने के लिए। जैसे अमिताभ बच्चन कहा कि बुजुर्गों ने कहा कि अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, तो कहा कि लो मैं खड़े हो गए जाने ना।
1: हाँ, वो एक गाना है नमक लाल सही बात। वो खड़े होना और जीवन में खड़े होना दोनों अलग बात है।
2: हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि चिड़ियों के सिर्फ ना चिड़ियों के सिखाना नहीं, बल्कि उसमें होता है उड़ने के लिए
0: कला।
2: हाँ, उसमें होता है वो, या जब हो जाता है समय उड़ने के लिए तो उड़ते हैं,
1: क्योंकि कुदरत ने उनको ऐसे ही बनाया है कि हर चीज़ उनमें है, उन्हें सिखानी नहीं पड़ती, इंसान तो सीखता है ना सब चीज़।
0: नहीं, पर कहने के मतलब ये है कि अब जैसे कि हम लोग उनका जन्म होता है ना, और जन्म के बाद हम दूध पीने लगते हैं, फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद फास्ट फूड खाएंगे ना, और फिर धीरे धीरे हम कड़ोट लेंगे, फिर उसके बाद में फिर बैठने लगेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम और जा कर के चलने का कोशिश करेंगे, तो फिर उसके बाद में चलना शुरू होगा ना।
1: लेकिन इंसान का बच्चे को बहुत टाइम लगता है, एक साल, और जानवर का बच्चा अभी पैदा हुआ 2-3 घंटे बाद लड़खड़ा के खड़ा हो गया तो फिर चलना शुरू कर देता है, तो भगवान ने उसको बनाया ही ऐसे है।
2: सही बात है, वो तो ऐसे बनाया है, पर वो सब जो एक जानवर में होता है ना, जन्म से चलने तक उड़ने तक, वो इंसान में भी होता है, वह थोड़ा टाइम लगता है।
0: सही बात, थोड़ा टाइम लगता है। पर कहने के मतलब ये है शांता जी, कि हम लोगों जैसे कि हिंदुस्तानी अपन लड़कन कैसे पाले है और गोरे कैसे पाले है, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि ये मुतसलफ़स्तान दौर दो, पर बचपन में हम लोग जब बच्चा हमें ख्याल है तब लड़का ढेर बच्चे होते थे ना घर में, काका के लड़का, फुआ के लड़का और सभी, तो हमारे आजा जो होते थे तो आजा का करता सब कोई के एक साथ में खड़ा होता, तो एक वो जैसे वास्कोमिस,
2: हाँ,
0: उसमें भात सान सान करके सब कोई के एक एक हाथ एक एक और आजा जो सबके हाथ से खिलाते थे, तो सब कोई के एक एक कौरा खिलाते और सब कोई अपन लड़कन धमलन दौड़ते थे, और हमारा पारी आता था तो हम फिर आजा के पास आ जाते थे और खेलते थे, और वो जिस प्रकार से हमारे बचपन में जो हम लोगों का प्रेम प्यार मिला है, शायद हम लोग शायद खुद खाना नहीं जानते होंगे उस समय कि अपने से, जैसे यहाँ नीदरलैंड में और यहाँ सिखा देते हैं बचपन में छुड़ी और चम्मच पकड़ा देते हैं, बोले कि ले वो ये मुत ले रहे ए, वो सब चीज़ हम लोगों सूरीनामों में नहीं था ना।
2: हाँ माता, बिगाड़ते कौन है?
0: बिगाड़ते वैसे तो इसमें बिगड़े के कोई बात नहीं ना,
2: अरे हाँ
0: अपना अपना प्यार अपना अपना प्रेम।
2: हाँ सभ्यता के लुप्त करावे हमें ही लोग ना, हमें लोग जब छुरी कांटा पकड़ा देंगे तो हाथ से लड़कन कब सीखेगा खाए के,
0: हाथ से लड़कन कब सीखेंगे। बस छुरी और कांटा पकड़ कर खाना वो भी एक वो भी सीखना पड़ता है ना।
2: हाँ जब एक माल जो सीख लिए अच्छे एक माल दात खोवेंद बेंद और मैं चिफा फिंगर्स तक खा ए तो दाते स्नान वेर अंदर स्टफ हम दात तक खा ले रहे, मैं दोनों चाहे सीखे के भी बहुत अच्छा हैगा।
0: पर शांता जी अगर जब जाओ देखा जाए कि हम लोगों ने जैसे फकांसी से गए ना दूसर दूसर देशों में तो वहाँ पर आपको चम्मच और फोरक और मेस से खाना पड़ता है होटल आदि में, पर फिर भी जब तक अपना खाना अपना हिंदुस्तानी खाना जो होता है और उसे हाथ से नहीं खाएंगे तब तक थोड़ा कमता ही होता है ना।
2: आएगा आदत है ना, जैसे अभी आपने कहा कि जब आप छोटे थे तो आपका आजा जो है बैठ कर सबको समूह खवाते थे, तो वो एक दूसरा और वो प्रेम जो था ना वो आज भी हो सकता है, मगर धौरानी के कारण वो नहीं होता है, काम के धौरानी के कारण और ढेर जने इंडिविजुअल हो गए, इंडिविजुअलिस्ट हो गए वैसे, तो ओकर खातिर अब वो सब चीज़ प्रेम ना है कि अरे हो सके है कि जैसे खाना का वक्त है तो सब कोई आंताफल आए के बैठो खाओ एक दूसरे के लिए परोसो ना कि अगोर एक जने परसों ने, वो तो प्रेम होता ना,
0: वो तो प्रेम होता। बबली जी इस पे आप आपके अपने बचपन पे क्या इसके बारे में राज है?
1: ना हमारा बचपन तो ऐसे भी था, हम तो जॉइंट फैमिली रहते थे, दादा और काका के बच्चे और साथ में हमारे फुआ के बच्चे भी थे, हमारी फुआ गुजर गई थी, हम तो 18 की 19 लोग रहते थे इकट्ठे, और कब बचपन बीता कब खाया मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है कि कैसे खाया,
2: हंसते खेलते में
1: हाँ सही बात
2: बचपन बीत गया।
0: तो चलते हैं अनुराधा जी का मांगे गए गीत। अनुराधा जी आपके लिए और जो आप अपना संदेश रख रहे हैं

0: सुंदर सा गीत जो चलाया गया, रिश्ता जो आज का विषय है, और अनुराधा जी और कौन सा संदेश आप रखने वाले हैं?
1: तो चले आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारे रिश्ते हमारे माँ बाप से हमें और उनसे करीब लाएं और हम उनका बेहतर ध्यान रख सके। तो जो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनसे अच्छा बना रहे, वो है लगातार बात करते रहना चाहिए। तो हमें आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की काफ़ी कमी होती है, ऐसे में आपको अपना समय निकालकर अपने माता पिता से ज़रूर बात करनी चाहिए। वे चाहे उसी शहर में रहते हों या वो दूसरे शहर में रहते हों या दूसरे देश में रहते हों, बहुत तो समय निकालकर हमें बात उनसे करनी चाहिए। बात करने से उनका मन भी हल्का होता है, उनसे उनकी चिंताओं और समस्याओं के बारे में पूछें और उनसे उनके दिन भर के कामों के बारे में पूछें। जब बच्चे बुजुर्ग माँ बाप से बात करते हैं तो उन्हें उनकी वैल्यू का पता चलता है और वे समझते हैं कि आपकी लाइफ में अभी भी उनकी बड़ी जगह है।

या आप वीडियो कॉल करके, तो माँ बाप को वो दूरी महसूस भी नहीं होगी और उनको लगेगा कि आप उनका हमेशा ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि माँ बाप से बहस या झगड़ा ना करें। क्या होता है कि जब कई बार माँ बाप तनाव और चिंता में अपने बच्चों को बहुत कुछ कभी कभी कड़वे शब्द बोल देते हैं और उन पर चिल्लाने भी लगते हैं, लेकिन आपको एक ज़िम्मेदार बच्चे की तरह अपने माता पिता से समझदारी से बात करनी चाहिए। उसे बहस उन्हें धक्का और नाराज़ होने की बजाय उनसे उनकी नाराज़गी का कारण जानना चाहिए। देखिए, बुज़ुर्गों के गुस्से में के कई कारण हो सकते हैं। कई बार किसी को बीमारी के कारण भी वो बिना बात से आपसे झगड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हर इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो कभी कभी तनाव में वो किसी बात पर उनको हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। तो हमें उनका समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसे में उनसे हमें प्यार से बात करनी चाहिए और उन्हें मजबूत होने का एहसास दिलाएं। ये बताने की कोशिश करें कि वह आपकी ज़िंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं और वो माँ बाप जो हमारे जीवन में हैं, उनकी हमारे जीवन में वो कितने हमारे लिए मूल्य हैं। और तो उनको समझें और उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें। देखिए, माँ बाप को लेकर हमेशा हमेशा हमें संवेदनशील हमेशा बने रहें। बड़े प्यार पूर्वक शांत दिमाग से माँ बाप को हमें उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, अपने माँ बाप के प्रति अपने प्यार को हमेशा जताएं। क्या होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तब तो माँ बाप हमें आकर खूब हमें गले लगाते हैं, पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं भाई ये तो हम एक दूसरे को हम जानते ही हैं, प्यार करते हैं, और बहुत बार हम उनको जताना भूल जाते हैं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। तो दिल से तो करते हैं पर हम दिखाते नहीं हैं कि हम उन्हें कितना प्यार, तो वो जो जताना मतलब होता है कि दिखाना। तो दिखाने का आप कितना भी मन में प्यार आप अपने माँ बाप से करते हैं, पर वो दिखाने की भी ज़रूरत होती है। उनसे गले मिलें, उनसे उनका हालचाल पूछें और उन्हें एक स्पेशल महसूस कराएं, उनको लगे कि आप उनका कितना ध्यान रखते हैं। जैसे अगर वह सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो उनका हाथ थाम लें ताकि उन्हें सुरक्षा और उनको फिक्र का एहसास हो कि भाई आप देखिए उनकी कितनी कदर कर रहे हैं। अगर वो आपसे पूछें कि क्या आप कि अब इतने सुंदर नहीं रहे, तो उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने सुंदर और खूबसूरत हैं। तो उनको यह हमेशा उनको ये नहीं महसूस कराएं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको हमेशा ये जताएं कि वो अभी भी अच्छे हैं और आप उनका चाहे वो भले ही बूढ़े हो गए पर आप उनको हमेशा उनका महत्व समझते हैं। उन्हें बाहर घूमने ले जाएं और उनके साथ शॉपिंग करें, नए कपड़े खरीदें, हैं हो सकता है उनका उनके पास कोई पुराना जूता है, जो जूते चप्पल जो उनके लिए अब पुराने हो गए हैं, उनके लिए छोटी छोटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आप पैसा खर्च करके बहुत बड़ा, उनको कभी हो सकता है पिक्चर दिखाने ले जाएं, हैं, या उनके साथ समुद्र के किनारे बैठ जाएं, समुद्र ना हो तो थोड़ा टहल लें, उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कर लें, शॉपिंग के साथ ले जाएं, भले ही शॉपिंग ना करें पर उनको कोई रेस्टोरेंट मिल जाकर उनके साथ चाय कॉफ़ी, आप उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, मतलब उनकी पसंद का काम करने की कोशिश करें।

0: भले ही आपको वो काम पसंद ना हो, पर माँ बाप के लिए इतना सा समय निकालकर उनको यह जतलाएं कि आप उनको कितना आप प्यार करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। तो ये तो मैं बातें और भी बताती रहूँगी, क्यों ना संजय जी एक गीत हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: और एक

0: जरूर अनुराधा जी गीत की ओर बढ़ेंगे, पर गीत की ओर बढ़ने से पहले क्यों ना न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं। सुनने वालों, आज का विषय जो कि रिश्ता के अंतर्गत में है, तो रिश्ता जैसे कि अभी अनुराधा जी भी सुनाए कि हमें अपने माता पिता यानी अपने पुरखों को भी ध्यान देना चाहिए। तो बबली जी, इस पे आप और क्या संदेश रख सकते हो कि हम अपने माता पिता कैसे, हम सब उनकर सेवा अपने आजी आजा कैसे हम सब उन लोग के साथ मिल सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए?
1: हम उनके ध्यान रखना चाहिए, आजा आजी का, माँ बाप का, सबका, जिन्होंने हमें, अरे इतना उन्हें उनका सहारा बन के रहना चाहिए,
0: उनका सहारा बनकर रहना चाहिए। देखा जाए कि ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं कि ना जो फॉरसॉर्किंग सर्विस होते हैं ना शांता जी, तो फॉरसॉर्किंग सर्विस में जाओ तो देखो कि हमारे पुरखे जो, और कहीं कहीं कोई कोई से पूछो कि कैसे बच्चा आया या नहीं, तो उदास हो जाता है।
2: ऐसा तो है, और ये भी होता है कि हम कैसे अपने बच्चे से व्यवहार की है छोटे से बड़ा तक, और व्यवहार जो हम अच्छे से करेंगे तो बच्चा आता रहेगा।
0: व्यवहार जो हम अपने बच्चों के
2: स्नेह प्यार संस्कार से हम जैसे उसके साथ रहते हैं, वैसे बच्चे उम्र ढलने के बाद हमसे भी वैसे व्यवहार करेगा।
0: और देखा जाए कि जैसे कि हम सब अपने बच्चों के भी पोषण पालन में, जो जैसे अभी बात हो रहा था कि जैसे कि अपफूडिंग में हम लोगों ने जो प्रेम भाव से अपने बच्चों को पोषण पालन करते, खास करके इंडिया में देखो लड़कन 12-13 बरिस के हो गए अभी माए बाप यानी कि उन्हें अपने हाथ से खिलाते हैं, तो क्या उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं
2: चाहिए? वो तो यहाँ पे खास तौर पे यहाँ पे प्रेम प्यार होता ना जिस परिवार में, जिस हसीन में, तो वो होता है, अक्सर होता है। कितने तो माँ तो बड़े बेटों को भी अपने हाथ से खिलाते हैं, अपने बहू को भी, क्राइम केंद्रों को भी ऐसे खिला देते हैं। वो भावना होता है ना, वो
0: भावना और प्यार ना। हाँ। और देखा जाए कि हफ्ता में 7 दिन होता है ना शांता जी,
2: हाँ,
0: तो ऐसा क्यों ना कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें प्लान करना है अपने बच्चे के फुटबॉल ले जाना है, हमें ले जाना है उन्हें ताइकोंडो ले जाना है, हमें इसी प्रकार से अपने बच्चे में हम लगे हुए हैं, पर माता पिता को हम भूल जाते हैं, और आजा आजी तो दूर की बात है। तो कहीं हम सबको, क्या हम अपने बच्चे में लगे हुए, क्या इस पे हमें कम ध्यान देना चाहिए, या अपने आप को और इंसेट करना चाहिए कि हमें कम से कम हफ्ता में जब 7 दिन हैं तो 1 दिन समय निकालते हैं कि अपने माँ के साथ, अपने आजी के साथ, या जो हमारे पुरखे हैं जैसे कि अनुराधा जी ने कहा कि उनके साथ और जा करके।
2: तो वैसे जैसे मैंने अभी कहा, जैसे आप करोगे अपने माँ बाप के साथ, आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे भी देखेंगे कि आप कैसे व्यवहार करते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो वैसे वो बच्चा भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेगा। अगर आप परिवार में एकता बनाए रखोगे ना, और अपन बच्चे को भी कहोगे कि फांजा अच्छा चल जा अपने बुजुर्गों के पास, वहाँ थोड़ा सा बैठ, तो एक नाता हो जाता है। और वही माता पिता अगर चल जाता है वहाँ फॉरसॉर्किंग सर्विस में, तो वो बच्चा जो भी वो समय भी बनाकर जाते हैं देखने के लिए अपन नाना नानी आजा आजी या जो भी हो, तो होता है, ऐसा होता है। जे वही कहते हैं, कभी एक बुजुर्ग ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कही तासु फल छाका, संस्कार के बात है भाई,
0: संस्कार के बात है। तो अनुराधा जी, आप हमें अपना विषय, जो आज का विषय रखा गया है, विषय की ओर और आगे संदेश रखिए।

संजय जी आगे बढ़ा जाए और बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा रिश्ता हम अपने माँ बाप से और गहरा कर सकें। तो एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है जो हम जिससे हमारा रिश्ता माँ बाप के साथ माता पिता के साथ अच्छा बना रहे वो है हम साथ मिलकर काम करें। कई बार हम अपने माता पिता को इतना आराम और सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं कि उस चक्कर में हम उनके साथ मिलकर काम करना और किचन में समय बिताना भूल जाते हैं। हमेशा अपनी माँ के बनाए खाए या खाने या चीज़ों की तारीफ करें क्योंकि वाकई पेरेंट्स से अच्छा गिफ्ट एक बच्चे के लिए कुछ नहीं है। जैसे बचपन में वे आपकी हर बात और अकेलापन दूर करते थे, आज उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपकी माँ अच्छा कुछ बनाती थी तब खाना तो बनाती थी, अभी भी बनाती हैं अच्छा, पर बहुत बार होता है जैसे बूढ़े होते हैं तो फिर आप किचन में इतना नहीं कर पाते, आप थक जाते हैं। पर ये मतलब नहीं कि उनको वो भूल गए हैं, तो वो भले ही खाना ना भी बना पाए पर माँ बाप की तब भी आप उनकी माँ की तारीफ करें, पिताजी की तारीफ करें कि वो हमेशा उनको पहले की यादें दिलाएं, बातें याद दिलाएं कि वो कितना अच्छा करते थे और आज भी आप वो आपको वो क्षण याद हैं और उन्हें वो याद दिलाएं कि और भरोसा दिलाएं कि भाई आप हमेशा उनको हमेशा आप उनके साथ मिलकर हमेशा आप हमेशा रहेंगे, उनकी मदद करेंगे। आप अगर वो ना भी खाना बना सकें तो आप उनके साथ मिलकर उनकी मदद करें और भले ही वो कुछ ना थोड़ा ही कर पाए पर आप उनके साथ मिलकर आप ऐसा उनको महसूस कराएं, उनको लगे कि उन्हीं ने सब कुछ करा है। तो यह अक्सर हम जब होता है जो मिलकर उनसे काम करेंगे, उनके साथ हाथ बटाएंगे और हंसने और बातचीत करेंगे हंसते, तो इसमें वो माहौल भी बड़ा अच्छा बना रहता है और माँ बाप बहुत खुश रहते हैं कि उनके लिए यह क्षण जो होते हैं ये अनमोल होते हैं और माँ बाप के साथ ये बिताए हुए जो पल होते हैं वो कभी वापस नहीं आते, वो सबसे अनमोल होते हैं। तो ये थी तो बात कि आपस में मिलकर काम करें। आगे जो बात है वो है हमेशा अपनी परेशानियाँ जो भी हों अपने माँ बाप के साथ बांटें, क्योंकि बहुत बार होता है हमें लगता है कि अभी माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हम उनको क्यों परेशान करें, क्यों अपने परेशानियों के बारे में बताएं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बुज़ुर्ग माता पिता की परेशानी